उम्र के भी हज़ारों को याद आएंगे, उम्र के भी हज़ारों को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे, कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है। सुनने वालों के सेवा में विजयंती नाथू का प्यार भरा नमस्कार। आपका जन्मदिन है, आपके घर पर एक नए मेहमान आए हैं, यानी एक बेटा या तो एक बेटी ने जन्म लिया है या तो कोई जश्न आपके घर पर है, तो आप सभी को बधाइयाँ पेश कर रहे हैं। जो बीमार है या लाचार है तो भगवान से तंदुरुस्ती के लिए प्रार्थना कर रही हूँ। जिसके घर पर विपत पड़ी है भगवान उन्हें सहन शक्ति प्रदान करे। जो हमारे देश में मेहमान बनकर आए हैं हम आपको हृदय से स्वागत करते हैं, और जो विदेश जाने वाले हैं हम आप सभी को एक शुभ यात्रा पेश कर रहे हैं। जहाँ पर भी आप हैं, जिस हाल में भी आप हैं, आप सभी को भी हम याद करते हैं। और जो लोग इंटरनेट द्वारा हमारे प्रोग्राम को विदेश में सुन रहे हैं आप सभी को भी हम याद करते हैं।

अभी आप सुन रहे थे पर्वतों से आज मैं टकरा गया, तुमने दी आवाज, लो मैं आ गया, आप बुलाए और मैं ना आऊं, ये तो हो ही नहीं सकता। सुनने वालों, एक बहुत सा सुंदर भजन हम पेश करते हैं आप सभी के वास्ते, हे शारदे माँ।

अभी आप सुन रहे थे हे शारदे माँ, हे शारदे माँ अज्ञानता से हमें तार दे माँ। मुकेश जी प्रोग्राम में आ रहे हैं, सुनने वालों द माइटी मुकेश जी से आप सुनेंगे जाऊँ कहाँ बताए दियो।

माइती मुकेश जी की आवाज़ में भी आप सुन रहे थे जाओ कहाँ बताए दिल दुनिया बड़ी है संग दियो। तुम मुझे यूं भूला न पाओगे, फ्रॉम द मूवी पगला कहीं का से हम पेश करते हैं, मोहम्मद रफी जी आपको सुनाने वाले हैं।

अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी जी की आवाज़ में फ्रॉम द मूवी पगला कहीं का से हमने पेश किए है तुम मुझे यूँ भूला न पाओगे। वा दिया मेरा दामन लता जी आपको सुनाने वाले हैं फ्रॉम द मूवी अभिलाषा।

आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी अभिलाषा से लता जी की आवाज में वादियां मेरा दामन। मेरे टूटे हुए दिल से कोई तो आज ये पूछे कि तेरा हाल क्या है। रमाइटी मुकेश जी आपको सुनाने वाले हैं।

अभी आप सुन रहे थे दमायती मुकेश जी की आवाज़ में मेरे टूटे हुए दिल से कोई तो आज ये पूछे कि तेरा हाल क्या है। एक बहुत सुंदर गीत हम चुनकर रखे हैं आप सभी के वास्ते और फ्रॉम द मूवी चोर मचाए शोर, इसी फिल्म से हम पेश करते हैं आप सभी के वास्ते। चलिए मिलकर सुनते हैं।

लता जी के साथ में मोहम्मद रफ़ी जी भी आपको सुनाने वाले थे फ्रॉम द मूवी चोर मचाए शोर, एक डाल पर तोता बोले और एक डाल पर मैना। दो कदम तुम भी चलो, दो कदम हम भी चले, फ्रॉम द मूवी एक हसीना दो दीवाने आपको सुनाने वाले हैं मुकेश जी के साथ में लता जी। चलिए मिलकर सुनते हैं।

अभी आप सुन रहे थे दो कदम तुम भी चलो दो कदम हम भी चले, लता जी के साथ में मुकेश जी आपको सुनाने वाले थे फ्रॉम द मूवी एक हसीना दो दीवाने। इंसान को इंसान धोखा नहीं देता, इंसान को इंसान धोखा नहीं देता, बल्कि इंसान को उसकी उम्मीदें धोखा दे जाती है जो वो दूसरों से रखता है। चेहरे पे गिरी जुल्फे कह दो तो हटा दूं मैं, मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले हैं। चलिए मिलकर सुनते हैं ये सुंदर सा सॉन्ग फ्रॉम द मूवी सूरत से आप सुनेंगे, मोहम्मद रफ़ी आपको सुनाने वाले हैं।

अभी आप सुन रहे थे चेहरे पे गिरी सूफे, मोहम्मद रफी जी आपको सुनाने वाले थे फ्रॉम द मूवी सूरज से हमने पेश किए हैं। सुनने वालों एक लाइन है, कितनी प्यारी लाइन है कि आंखों का पानी और ड्यू की कहानी हर कोई नहीं समझ सकता। मोहम्मद रफी जी आपको सुनाने वाले हैं एक बार फिर से फ्रॉम द मूवी लोफर से आप सुनेंगे आज मौसम बड़ा बेईमान है, और ये सुंदर सा गीत हम पेश करते हैं धीरज के तरफ से आरती जी के वास्ते, और ये दोनों मिलकर ये प्रोग्राम को सुन रहे हैं तो इन दोनों के वास्ते हम पेश करते हैं और माता बेस्ट यानी माता बेत्सी जी के वास्ते भी।

अभी आप सुन रहे थे, आज मौसम बड़ा बेईमान है, मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले थे फ्रॉम द मूवी लोफर से। और ये गीत हमने पेश किए हैं माता बस्ती जी के वास्ते और ख़ास करके धीरज की तरफ से आरती जी के वास्ते। कोई तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है तो लेट मत करो। किस्मत से मिलती है ऐसे लोग जो अपना वक्त किसी और के नाम कर देते हैं। सुनने वालों, प्रेम कहानी है फिल्म का नाम। इसी फिल्म से हम पेश करते हैं किशोरदा की आवाज़ में, और गीत का बोल है, दोनों किसी को नज़र नहीं आए, चल दरिया में डूब जाए।

मैं तुझे प्यार करूंगा तो तेरी याद आएगी तो हम तुम मिलेंगे तो सब लोग देखेंगे तो देखेंगे तो

लता जी के साथ में किशोर दा आपको सुनाने वाले थे, दोनों किसी को नजर नहीं आए चल दरिया में डूब जाए, फ्रॉम द मूवी प्रेम कहानी से हमने पेश किए हैं। कभी किसी के सामने अपनी सफाई पेश ना करो, कभी किसी के सामने अपनी सफाई पेश ना करो, क्योंकि जिसे तुम पर यकीन है उसे ज़रूरत नहीं, और जिसे तुम पर यकीन नहीं वो कभी मानेगा नहीं। हेलो, विश्वास है फिल्म का नाम। इसी फिल्म से हम पेश करते हैं आप सभी के वास्ते नमाई दी मुकेश जी की आवाज़ में आप सुनेंगे चांद की दीवार न तोड़ी, प्यार भरा दिल तोड़ दिया।

अभी आप सुन रहे थे चांद की दीवार न तोड़ी, प्यार भरा दिल तोड़ दिया, एक धनवान की बेटी ने निर्धन का दामन तोड़ दिया। अभी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी विश्वास सिदम माइती, मुकेश जी की आवाज़ में। सुनने वालों, जरा सा हम देखें, जी हाँ, फिल्म का नाम है सारंगा और इसी फिल्म से हम पेश करते हैं द टाइटल, हाँ दीवाना हूँ मैं।

अभी आप सुन रहे थे हाँ दीवाना हूँ मैं, द माइटी मुकेश जी की आवाज़ में हमने पेश किए हैं। सुनने वालों, मोहम्मद रफ़ी जी प्रोग्राम में आ रहे हैं और गीत का बोल है आज की रात मेरे दिल की सलामी ले ले, फ्रॉम द मूवी राम और श्याम से आप सुनेंगे।

आते तो कुछ और बात होती। मोहम्मद रफ़ी जी प्रोग्राम में आ रहे हैं सुनने वालों, फ्रॉम द मूवी कन्यादान से आप सुनेंगे।

0: tips voor dunnere en zachtere nieuwe.
1: सुनने वालों, कोई और गीत हम पेश करते हैं आप सभी के वास्ते। आप सुनेंगे, मैं हूँ साखी तू है शराबी शराबी।

सुन रहे थे मैं हूँ सागी, तू है शराबी शराबी। प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाते हैं सुनने वालों, और एक व्यक्ति जो है वो ये प्रोग्राम को सुन रही है, वैसे तो कई है लेकिन उनमें से एक है गीता महावीर जी। तो गीता महावीर जी के वास्ते ये सुंदर सा सॉन्ग हम चलाते हैं आप यानी आपके वास्ते, फ्रॉम द मूवी तीसरी मंजिल से आप सुनेंगे।

तुमने मुझे देखा होकर मेहरबा मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले थे, और ये गीत खास करके हमने पेश किए हैं गीता महावीर जी के वास्ते जो ये प्रोग्राम को सुन रही है। आँखों में कयामत के काजल महेंद्र कपूर जी आपको सुनाने वाले हैं। फ्रॉम द मूवी किस्मत से आप सुनेंगे।

आँखों में कयामत के काजल, अभी आप सुन रहे थे महेंद्र कपूर जी की आवाज़ में। जब से बनी है ये दुनिया, प्यार सनम है प्यार खुदा, द टाइटल फ्रॉम द मूवी आओ प्यार करे। उषा खन्ना के साथ में महेंद्र कपूर जी प्रोग्राम में आ रहे हैं, सुनने वालों।

द टाइटल फ्रॉम द मूवी आओ प्यार करे अभी आप सुन रहे थे। रंगत तेरी सूरत से किसी में नहीं नहीं, लता जी के साथ में मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले हैं, लेकिन मैं आप सभी से कुछ कहना चाहती हूँ और वो ये है, झूठे इंसान की ऊंची आवाज़ सच्चे इंसान को खामोश कर देती है, झूठे इंसान की ऊंची आवाज़ सच्चे इंसान को खामोश कर देती है, लेकिन सच्चे इंसान की खामोशी झूठे इंसान की बुनियाद तक हिला देती है।

अभी आप सुन रहे थे रंगत तेरी सूरत सी किसी में नहीं नहीं हम तुम्हारे लिए लता जी और मोहम्मद रफ़ी जी मिलकर सुनाने वाले हैं फ्रॉम द मूवी इंतकाम।

फ्रॉम द मूवी इंतकाम से अभी आप सुन रहे थे गीत तेरे साज का, तेरी ही आवाज हूँ लता जी आपको सुनाने वाले थे। माइती मुकेश जी प्रोग्राम में आ रहे हैं सुनने वालों, और मुकेश जी आपको क्या सुनाने वाले हैं? दुनिया बनाने वाले, क्या तेरे मन में समाए, काहे को दुनिया बनाई।

गई थी मऊआ, फिर भी कहीं शादी ब्याह की बात नहीं चलाई किसी ने। सुबह शाम वो अपनी मरी माँ को याद करके रोती, रात दिन कलपता था बिचारी का मन। मन समझती है ना आप?

एक थका प्यासा मुसाफिर नदी किनारे पानी पीने आया। महुआ को देखते ही उससे रीझ गया। नादान महुआ भी उसे दिल दे बैठी। जंगल की आग की तरह गांव में फैल गई उनकी प्यार की बात। सौतेली माँ भला कैसे देख सकती थी उनका सुख। उसने महुआ को एक सौदागर के हाथ बेच दिया। रोती छत पताती महुआ चली गई सौदागर के साथ। बिछड़ गई जोड़ी। महुआ का प्रेमी आग

0: अभी आप सुन रहे थे दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई, द माइटी मुकेश जी आपको सुनाने वाले थे फ्रॉम द मूवी तीसरी कसम। मोहम्मद रफी जी प्रोग्राम में आ रहे हैं सुनने वालों, फ्रॉम द मूवी आए दिन बहार के इसी फिल्म से हम पेश करते हैं मेरे दुश्मन तू मेरी दोस्ती कोतर से।
1: मेरे दिल से

सुन रहे थे मेरी दुश्मन तुमेरी दोस्ती को तरसे, मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले थे फ्रॉम द मूवी आए दिन बहार के। नए लोगों के आने से पुराने की कीमत कम ना करना, क्योंकि हीरा चाहे कितना भी पुराना हो चमक नहीं छोड़ता। मोहम्मद रफ़ी जी आ रहे हैं प्रोग्राम एक बार फिर से फ्रॉम द मूवी इज्जत से। हम पेश करते हैं क्या मिले ऐसे लोगों से।

अभी आप सुन रहे थे क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी फिक्रत छुपी रहे। मोहम्मद रफ़ी जी अभी आपको सुनाने वाले थे फ्रॉम द मूवी इज्जत से हमने पेश किए हैं। किसी ने कहा है मेरे दोस्तों, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो। फ्रॉम द मूवी आया सावन, झूम के इसी फिल्म से हम पेश करते हैं।

किसी ने कहा है मेरे

मोहम्मद रफी जी आपको सुनाने वाले थे फ्रॉम द मूवी आया सावन झूमके। किसी ने कहा है मेरे दोस्तों, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो। तो मैं आप सभी से कुछ कहना चाहती हूँ कि जिंदगी तो सस्ती है, जिंदगी तो सस्ती है, बस गुजारने का तरीका थोड़ा महंगा है।

फ्रॉम द मूवी संतान से हमने पेश की है रमायती मुकेश जी की आवाज़ में आप सुन रहे थे तू मिले तो पूछूं तुझसे क्या ये है न्याय तेरा। शीशा कमज़ोर बहुत होता है, शीशा कमज़ोर बहुत होता है मगर सच दिखाने से घबराता नहीं।

फिल्म मूवी संगम से हमने पेश की है ओ महबूबा, तेरे दिल के पास ही है मेरी मंजिले मजदू। एक बात हमेशा याद रखे, कोई हाथ से छीन के ले जा सकता है पर नसीब से नहीं। फ्रॉम द मूवी आई मिलन की बेला द टाइटल हम पेश करते हैं आप सभी के वास्ते मोहम्मद रफी जी के साथ में आशा भोसले जी आपको मिलकर सुनाने वाले हैं।

आप सुन रहे थे द टाइटल फ्रॉम द मूवी आई मिलन की बेला, मोहम्मद रफी जी और आशा भोसले मिलकर सुनाने वाले थे। उम्मीद, उम्मीद आधी जिंदगी है और मायूसी आधी मौत।

आप सुन रहे थे सारे जमाने पे मौसम सुहाने पे फ्रॉम द मूवी आप आए बहार आए, मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले थे। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि तकलीफ़ क्या होती है। तकलीफ़ ये एक ऐसी चीज़ है जो लोगों को सिर्फ अपनी दिखती है, दूसरों की नहीं।

0: अभी आप सुन रहे थे कितना प्यारा वादा है इन मतवाली आँखों का। सुनने वालों, एक बहुत सा सुंदर गीत हम पेश करते हैं आप सभी के वास्ते। फ्रॉम द मूफ यानी फ्रॉम द मूफी तीसरी मंजिल से आप सुनेंगे, लेकिन ये गीत चलाने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, और वो ये है, जीत से हासिल हुई चीज़ कभी खुशी नहीं देती।
1: क्या मजाक लगा रखा है, चलना है कि नहीं आपको? आप आती हैं कि नहीं? ओके, मैं जाता हूं। ये मुसीबत में फंसा दिया, आप चलते हैं कि नहीं? देखो, पहाड़ उतरना आसान काम नहीं, पाँव फिसल गया तो खड्डे में गिरोगी। आखिर आप चाहती क्या है?
2: मुझे माफ कर दीजिए।
1: माफ किया, चलो अब।
2: ऐसे नहीं, प्यार से नहीं है।
1: अच्छा बाबा, माफ किया, अब चलो उठो।

0: तीसरी मंजिल है फिल्म का नाम, इसी फिल्म से हमने पेश की है ओ मेरी सोना रे सोना रे सोना। अभी आप सुन रहे
1: मित्रों, सुख शांति सांसारिक साधनों में नहीं, अपने सत्यता और सत्य स्वरूप को पहचान।

मित्रों, मन पर नियंत्रण रखना जरूरी है, बहुत जरूरी है, क्योंकि मनुष्य का मन वायु की तरह चंचल है। और ये मन ही है मित्रों, ये मन ही है जो मनुष्य को काम वासनाओं की तरफ भटकता हुआ रहता है। अगर जीवन का सफल बनाना है मित्रों, तो मन पर काबू करना बहुत जरूरी है। मन पर काबू करना बहुत जरूरी है दोस्तों, ये मत भूलिए।

मित्रों, मन को वश में करने से दिमाग की शक्ति केंद्रित होती है, जिससे कार्यों में सफलता मिलने लगती है। मित्रों, इस पर विश्वास कीजिए। और गीता के अनुसार जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया है, वही मन में पैदा होने वाली विकार की चिंताओं और इच्छाओं से भी दूर रहता है, बड़े दूर रहता है। मित्रों, साथ ही व्यक्ति अपने लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर लेता है, बिल्कुल आसानी से प्राप्त कर लेता है। दोस्तों,

0: मित्रों, अगर मन को वश में नहीं करोगे तो तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा वो। अज्ञानी व्यक्ति स्वयं के लाभ के लिए कार्य करते हैं, जबकि बुद्धिमान लोग, मित्रों, जबकि बुद्धिमान लोग विश्व कल्याण के लिए कार्य करते हैं। अब पता नहीं है कि आप बुद्धिमान हो या कैसे हो, मगर हम यही आशा रखते हैं कि आप बुद्धिमान हो। मित्रों, जो हम आपसे बातें बतलाते हैं, आप इसे हल्का में ना लीजिए, हवा में नहीं लीजिए, जीवन में उतारने की कोशिश करना, तभी आपके बाकी जीवन जो है, तभी उसका और आनंद उठा पाओगे। अन्यथा वही घिसते रह जाएंगे हम। भले ही धन दौलत सब कुछ है, मगर पूछिए अपने आप से कि आपके अंदर में वो खुशी है, हौसला है, कि कुछ खामियां महसूस कर रहे हो आप, कि कुछ कमती है अभी, तो यही है कमती। ज्ञान के सागर में से जितना पानी ले पाओ, जितना ज्ञान ले पाओ, लीजिए, वो सब आपके काम में आएंगे। मित्रों, इसमें कोई संदेह नहीं है।
1: भाई बहनों, स्वयं का बचाव करने के लिए कभी दूसरों को कसूरवार मत ठहराओ, क्योंकि स्वयं के पास सत्य को प्रकट करने का अपना ही तरीका है।

दोस्तों, यदि किसी काम को करने में डर लगे तो याद रखना ये संकेत है कि आपका काम वाकई में बहादुरी से भरा हुआ है। बहादुरी से भरा हुआ है मित्रों, कमजोर व्यक्ति से दुश्मनी ज्यादा खतरनाक होती है। ध्यान करना हम क्या बतला रही है, सरोजनी की बात है। कमजोर व्यक्ति से दुश्मनी ज्यादा खतरनाक होती है क्योंकि वह उस समय हमला करता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं मित्रों, तभी वे हमला कर देते हैं। तो ऐसे लोगों से बहुत बच के रहना चाहिए दोस्तों। क्या

दोस्तों, झूठ कितना भी बलवान क्यों ना हो, वो सच को नहीं दबा सकता। फिर से बोल रहा हूं, आप इसे हमेशा याद रखना। झूठ कितना भी बलवान क्यों ना हो, वो सच को नहीं दबा सकता, नहीं दबा सकता। अपने विचारों को पवित्र बनाओ मित्रों, क्योंकि व्यक्ति अपने विचार से ही अनंत काल तक जीवित रहता है, अनंत काल तक जीवित रहता है मित्रों।

साथियों, इतना कमजोर मत बनो कि कोई आपको तोड़ सके, बल्कि इतना मजबूत बनो कि आपको तोड़ने वाला खुद ही टूट जाए। हाँ, इतना मजबूत बनो, स्ट्रांग हो जाओ मित्रों। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ना कि जब शांति के सारे मार्ग बंद हो जाए और न्याय न मिले तो युद्ध करो, युद्ध करो। वास्तव में मुसीबत साथ देने वाला मित्र ही सच्चा मित्र होता है। आपको है एक ऐसा मित्र, एक दोस्त कि सब खब्बू है, आए खाए पिए मस्ती में रहते हैं और प्रॉब्लम भाई तो भागे हैं जैसे हरणा। नहीं, ऐसे इस तरह का दोस्त आपको नहीं है, हम मजाक कर रहे हैं मित्र। आपका मित्र तो बहुत अच्छे हैं, सब अच्छे अच्छे लोग हैं, ये तो पता है मुझे। और ध्यान रखना इसको भी दोस्तों। प्रार्थना ऐसे करें जैसे कि सब कुछ भगवान पर निर्भर है, और काम ऐसे करें जैसे कि सब कुछ आप पर निर्भर है। खुद को प्रभावित करने के लिए अपने दिमाग का उपयोग करें, और दूसरों को प्रभावित करने के लिए अपने दिल का उपयोग करें।

आज चले चलेंगे कुछ मूवी, एक मूवी है जिसे काफ़ी अच्छे अच्छे गाने हैं और देखा जाए हरियाली और रास्ता के हम कुछ गाने आप लोग के सुनाएंगे। आज मेरा प्रोग्राम ऐसे रहेगा, हम हर गाने सुनाएंगे आप लोगों के अच्छे अच्छे गाने जो हरियाली और रास्ते में, हरियाली और रास्ता में गाया गया है। तो हम ले चलते हैं, पहला गाना लेके चलते हैं हरियाली और रास्ता के, नेकंती जिसमें मनोज कुमार मलजीना ने काम क्या है, शंकर जाई किशन का ये म्यूजिक है और हम सुनते हैं, हम आप लोग के सुनाते हैं, चलो मिलके सुनते हैं।

जी हाँ दोस्तों, बोल मेरी तकदीर में क्या है, मेरे हम सफर अब तो बता, मूवी हरियाली और रास्ता नई खतीन तो शस्त्र का, जिसपे मनोज कुमार माला जिले ने काम किया है, शंकर जय किशन का म्यूजिक है। चलो हम ले चलते हैं एक बार फिर से हरियाली और रास्ता से निकाला हुआ एक गीत है, एक गाना है जो लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ है, और देखा जाए शंकर जय किशन का म्यूजिक है, लाख तारे आसमान पे।

ज्यादा तो दिल मेरा चुपचाप जला, हरियाली और रास्ता नहीं का फिल्म में मूवी मनोज कुमार माला जीना ने इसमें काम किया था। अभी आप सुन थे मुकेश और लता का आवाज। हमने चलते ही एक बार फिर से हरियाली और रास्ता का बोले कहीं कहीं पे राजा रानी भी रहता है ना, तो चलो राजा और रानी के बारे में हमको सुनाते हैं और हरियाली और रास्ता का निकाला गाना है।

जहाँ दोस्तों एक बार मैंने फिल्म से चला दिया था हरियाली और रास्ता का, मुझे बहुत पसंद है ये गाना। हम सोचते हैं आगे में आप लोग के भी पसंद है। तो ठीक है, एक था राजा एक था रानी।

जय दोस्तों बोले नाव तो खो गया रह गया पानी, फिल्म हरियाली और रास्ता से भी आप सुन रहे थे एक था राजा एक था रानी, नई कंटिन टू इंसेस्ट का है, मनोज कुमार माला सिन्हा ने काम किया है। चलो हमने चलते हैं दोस्तों हरियाली और रास्ता का नई कंटिन टू इंसेस्ट फिर से एक बार देखा जाए तो कौन सा गीत मैंने रखा है यहाँ पे, अल्लाह जाने क्या होगा आगे। शंकर जय किशन का म्यूजिक है।

जहाँ दोस्तों इब्तदाई इश्क में हम हरियाली और रास्ता का निकाला हुआ गाना है, काफ़ी अच्छे अच्छे गाने हैं और ये मूवी भी काफ़ी अच्छी मूवी है। हम एक बार फिर चले चलते हैं ये हरियाली और रास्ता।

ये हरियाली और रास्तां नेकन जी ट्वीन सस्ता का मूवी है, मनोज कुमार माला सीधा ने काम किया है। चलो एक गीत और है, बहुत ही बढ़िया गाना है, बहुत ही अच्छा गाना है, तेरी याद दिल से भुला ना सकूंगा, करोड़ों का दिल जीतने वाला, मिलियंस ऑफ हार्ट, मुकेश का गाया हुआ गाना है। चलो हम सब मिलकर सुनते हैं हरियाली और रास्ता का, ये निकाला हुआ गाना है, नेकन ट्वीन सिस्टर का है। जे फिल्म बिना देखे से उसे देख सकता है, काफ़ी अच्छी फिल्म है, मूवी।

0: से।
1: जी हाँ दोस्तों, तेरी याद दिल से भुला ना सकूंगी, मूवी हरियाली और रास्ता नहीं कंती। द मिलियन ऑफ आर्स नायटू मुकेश की आवाज थी, शंकर जय किशन का म्यूजिक थे। एक आखिरी गाना है फिल्म हरियाली और रास्ता का, हम सब मिलके सुनते ही परवानों की रात। आशा भोसले इस गाने को गाया है, नहीं कहते जो इस शस्त्र का है।

जी हाँ दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे एक आखिरी गाना मूवी हरियाली और रास्ता का। आशा भोसले ने गाया था, मनोज कुमार मलाजीना ने इसमें काम किया है, नेहा ट्विंस का है। ठीक है दोस्तों, हम चलते हैं मूवी हम आप लोग के लिए चलते नेहा वेफन सेस्तक में। जोहर महमूद इन गोवा, आंखियों का नूर है तू, ये मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज़ है दोस्तों। सुलेमान कल्याणपुर जो इसका सिंगर है, सुलेमान कल्याणपुर और मुकेश ना लता मंगेशकर नहीं है, सुलेमान कल्याणपुर और मुकेश की आवाज़ है। कल्याण जानन जी का ये म्यूजिक है। और देखा जाए आप लोग के हमले चलते हैं नेहा ट्विंस फाइव एंड सेस्टक में, आँखियों का नूर है तू।

चले हे चले हे चले हे ससुरार। अभी आप सुन रहे थे जोहर एन महमूद इन गोवा, लोदो दीवाने दिल के चले हे देखो मिल के, महमूद सिमी अग्रवाल और जोहर इसमें काम क्या इस मूवी में। चलो हम ले चलते हैं एक एक ऐसा गाना है फिल्म जोहर महमूद के, जोहर इन महमूद इन गोवा ने कितने फैंस से आज तक में, और देखा जाए तो एक जो गाना अब हम रखेंगे बहुत वही गाना है और हम सब मिल के सुनेंगे। उषा खन्ना गाई से और मुकेश इसका जो म्यूजिक बजाई से कल्याण जी आनंद जी है, और वहीं जलाबादा जलाबादी का ये लिखा हुआ गाना है। हम आप लोग के सुनाते हैं दोस्तों एक ऐसा गाना जो हम बहुत दिन ना सुन ली है और बहुत मन की सुनत काफ़ी लोग जो प्रोग्राम को सुनते हैं, और अभी ये गाना आप सब के नाम है दोस्तों।

न कोई रहा है ना कोई रहेगा जोर महमूद इन गोवा लेकिन तीन फैंस सस्त का गीत था दोस्तों। हम थे आपके आपके साथ अनिल सरजू जो पूरा प्रोग्राम को आपको सुनाया है और उम्मीद है आप लोग के ज़रूर पसंद है ये प्रोग्राम। ठीक है दोस्तों अभी ठीक है यहाँ से हम कहते ही अपना आप सबको राम राम नमस्कार।

संसार की तरफ चलने वाले का कोई भी साथी नहीं होता, पर भगवान की तरफ चलने वाले के सब साथी हो जाते हैं।

भाइयों और बहनों, जहां साहस और परमात्मा साथ है, वहां कठिनाइयां व समस्याएं स्वतः समाप्त हो जाती है। यह मेरा और मेरी पत्नी

ऐसी धारणा है कि पुण्य करने से सुख प्राप्त होता है और पाप करने से दुख मिलते हैं। लेकिन पाप क्या है, पुण्य क्या है, सुख क्या, दुख क्या है, इस भजन में इस बात को बड़ी भली भांति समझाया गया।

0: हर काम के लिए, हर अपर्टेंसी के लिए, मौत के समाचार, फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक अपर्टेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार थे सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 07537322047। मेरे इन्फो www.radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Advocatenkantoor aan het Raam Zoet wakalet ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakil ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delftlaan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
3: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Fahon Hindustani Radionieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. In Zandvoort werd gisteren een bezoeker van Pride on the Beach geslagen en uitgescholden, dat meldt NH Nieuws. De politie noemt het aannemelijk dat de geaardheid van het slachtoffer de aanleiding was. Met camerabeelden werd de minderjarige verdachte herkend en aangehouden. Het slachtoffer hoefde niet naar het ziekenhuis. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit meldt dat de stoelen in 453 in de VS geregistreerde Boeing 737 MAX toestellen verkeerd zijn geïnstalleerd. Bij noodlanding zouden passagiers hierdoor gewond kunnen raken. Onduidelijk is of ook toestellen van buitenlandse maatschappijen hierbij horen. Een termijn voor herstel is nu niet gesteld. De aangehouden verdachte van de schietpartij zondag in Seattle is 15 jaar oud. Dat meldt de burgemeester Wilson vandaag. Na een tweede verdachte wordt nog gezocht. Een mogelijke derde schutter kwam om tijdens de schotenwisseling. Bij de schietpartij tijdens een culinair festival bij Space Needle vielen 3 doden en minstens 4 gewonden. De Duitse recherche klassificeert 410 mensen als islamitische terreurdreiging. Dat meldt mediagroep RND vandaag. Daarnaast gelden 65 personen als extreemrechtse en 17 als extreem linkse bedreiging. De cijfers volgen op een aanslag op de Pride in Berlijn, waarbij de 21-jarige verdachte Abdul B. met een auto inreed op een menigte. 1 vrouw kwam om en tientallen raakten gewond. En dan tot slot het weer. Vanochtend trekt de hardnekkige bewolking in het noordoosten snel oostwaarts. Elders in het land schijnt de zon. Dankzij flinke zonnestralen loopt de temperatuur in de middag flink op. In het zuiden is het zelfs zomers warm met maxima rond de 25 graden of meer. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
5: Dit is Fahon Hindustani Radio.
6: हर दिल से हमारा नाता है, हर दिल से हमारा रिश्ता है, हमेशा की तरह आज भी होंगे कुछ प्यारी प्यारी मीठी मीठी गाने जो आप चाहते हैं। जहाँ तक आवाज़ पहुँचे वहाँ तक हमारा ढेर सारा दुलार पहुँचे, पैगाम भी पहुँचे। मैं हूँ आपकी खिदमत में अनिल जारजू, जो अब से लेकर 11 बजे तक हमारा तुम्हारा साथ रहेगा। जहाँ पे दुख है, जहाँ पे ढेर सारे दुख है, हर एक दुख के घर में हमारा पूरा टीम आपके साथ है। जहाँ पे मातम है वहाँ भी हमारा साथ है, पूरा टीम रेडियो फहन के साथ है। भगवान इसे सहन शक्ति दे हर एक चीज सहने के लिए, दुख को सहने के लिए। जहाँ पे खुशी है वहाँ भी हमारा साथ है। तो आज हमारा प्रोग्राम चलेगी दोस्तों जैसे हमेशा चलते ही मंगलवार के, और हम आप चलाएंगे कुछ सजने हैं, कुछ अच्छे अच्छे गाने हैं, कुछ भजन है, कुछ अच्छे अच्छे गाने हम आप लोग के ज़रूर सुनाने वाले हैं। आज मंगलवार है, 28 जुलाई हो चुका है, 2026 में हम चला चुके हैं। घड़ी की तरफ देखा जाए तो 5:08 हो चुका है। हमारा तुम्हारा साथ है, 11 बजे तक हम रहेंगे, उसे 12 बजे तक रहते हैं, लेकिन आज हम कुछ वजह ही 11 बजे तक हम आपके साथ रहेंगे। तो कुछ गाने मैंने सेलेक्ट कर चुका हूं आपके सुनाने के लिए। हम चलते हैं कुछ भजन के रूप में, कुछ भजन जैसे गाने ही, और वही हम मैं आप लोग के सुनाऊंगा। 9 बजे तक हमारा भजन प्रोग्राम रहेंगे, उसके बाद हम कुछ गाने आप लोग के सुनाएंगे जो आपको पसंद है, जो आप चाहते हैं, आप सब चुन हैं फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो पे, जो दनक शहर से हम लोग प्रोग्राम को करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये मैं आप लोग के बताना चाहता हूँ, ये जो आज का प्रोग्राम है मेरा। चलो हम आप लोग के लिए चलते हैं। मानू तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानू तो बहता पानी है, बोले मान तो देव ना मान तो पत्थर है। हर एक जो इस वक्त अपने पूजा पे है, अपने पूजा कर रहे, भगवान से सभी कुछ दे, हर एक दुख से बचा के रखे। जो इस वक्त अपना नौकरी पे जा रहे हैं, जो इस वक्त दाम पे है कार चलाते हैं, हर एक को बचा के चलना चाहिए, हर एक चीज बचा के करना चाहिए। आज मंगलवार है, सुबह का प्रोग्राम है। जो अभी जग चुका है, अपना कॉफ़ी पी रहा है, आप सबको हम एक शुभ दिन कहते हैं। नामस हे लतिम फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो की तरफ से

मानू तो मैं गंगा माँ हूँ, न मानू तो बहता पानी। जी दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे लता जी की आवाज। चलो हम आप लोग को ले चलते हैं हरिओम शरण की तरफ, एक हनुमान चालीसा हम सुनते हैं, मिलकर सुनेंगे, मैं भी सुनूंगा आप भी सुनेंगे।

जी हाँ, हमारे सुनने वालों, ये हनुमान भजन है और इसे सुनने से दिल हल्का हो जाते हैं, दिल खुश हो जाते हैं। ये जो भजन मैं आपके लिए चला रहा हूँ, हर एक जो इस वक्त पूजा करते हैं, हर एक पूजा करने वाले के लिए, और जहाँ तक ये आवाज़ पहुँचे, जहाँ तक लोग सुनते हैं, हर एक के लिए ये भजन थे। चलो दोस्तों, हमने चलते हैं सोनू निगम की तरफ, वो भी अच्छे अच्छे भजन को गाया है। आज मंगलवार सुबह का प्रोग्राम है।

जी हाँ, हमारे सुनने वाले ये शिवा का एक भजन था जो मैंने आप लोग के सुनाया है। जी हाँ दोस्तों, अभी मुझे एक को लिखा है जो श्याम पूरन है, वो इस एक गाने को मांग किया है, मुझे ऐप किया, मुझे कॉल किया है कि एक भजन को सुना दे मेरे लिए। मेरा ओकर लिफलिंग भजन है। ठीक है भाई श्याम पूरन, हम गाने को चलाते हैं, आप प्रोग्राम को सुनते हैं और हम आपका भजन आपके सुनाते हैं।

जी हाँ दोस्तों, श्री राम के गली में जाना, वहाँ नाश्ते मिलेगी राम को। आप देख सकते हैं नाश्ते हुए, शुभ का प्रोग्राम है, मंगलवार है दोस्तों, अख्तम तुरंत हो चुका है 2026, और भजन का प्रोग्राम है जहाँ तक की आवाज़ पहुँचे, ढेर सारा पैगाम पहुँचे, मोहब्बत भी पहुँचे। हम चलाते अगले भजन और मिल के हम सब सुनेंगे क्या भजन है।

जी हाँ दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे मेरे तन में भी राम, न्यू स्टाइल पे भजन है और आप लोग के मैंने सुनाया है। आप सब चुन है फाउन रेडियो से, फाउन हिंदुस्तानी रेडियो से आप सब चुन है दोस्तों। और हम चलते हैं आगे, देखा जाए तो जुबिन नौदियाल ने कुछ अच्छे अच्छे भजन को गाया है। चलो हम एक जुबिन नौदियाल के आवाज़ से कुछ भजन आप लोग सुनाते हैं।

0: जी हाँ, हमारे सुनने वालों, यहाँ तक थे हमारा भजन का प्रोग्राम। एक घंटे का भजन का प्रोग्राम थे, यहाँ से ख़त्म हो चुका है। हम आगे ले चलते हैं आप लोग के कुछ न्यूज़ से, कुछ रिकलाम के, और उसके बाद हम आपके साथ फिरेंगे। यूँ चला, यूँ गया और यूँ आ गया। कुछ न्यूज़ से कुछ बयाम है, उसके बाद हम कुछ गाने चलाएँगे आप लोग के लिए।
1: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
2: Dit is het Vahon Hindustani Radio nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. In november verschijnt een 18-jarige jongen voor de rechter in België wegens plannen voor een terroristische aanslag tijdens de Pride in Leuven. Via Telegram zocht hij naar wapens en sprak hij met een undercover agent. Na maanden voor arrest is hij inmiddels vrij in afwachting van het proces in november. Bij de grote bosbranden vlakbij Bordeaux ontstond een fenomeen dat een Franse brandweerman een vuurstorm noemde en de gouverneur van Gironde ongelooflijk ongezien. Deze vuurwolk ontstaat door de extreme hitte en energie van krachtige branden en is in Europa nog vrij nieuw. Het fenomeen maakt bosbranden moeilijker te bestrijden. In Zandvoort werd gisteren een bezoeker van Pride on the Beach geslagen en uitgescholden, dat meldt NH Nieuws. De politie noemt het aannemelijk dat de geaardheid van het slachtoffer de aanleiding was. Met camerabeelden werd de minderjarige verdachte herkend en aangehouden. Het slachtoffer hoefde niet naar het ziekenhuis. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit meldt dat de stoelen in 453 in de VS geregistreerde Boeing 737 MAX toestellen verkeerd zijn geïnstalleerd. Bij noodlanding zouden passagiers hierdoor gewond kunnen raken. Onduidelijk is of ook toestellen van buitenlandse maatschappijen hierbij horen. Een termijn voor herstel is nu niet gesteld. De aangehouden verdachte van de schietpartij zondag in Seattle is 15 jaar oud. Dat meldt de burgemeester Wilson vandaag. Na een tweede verdachte wordt nog gezocht. Een mogelijke derde schutter kwam om tijdens de schotenwisseling. Bij de schietpartij tijdens een culinair festival bij Space Needle vielen 3 doden en minstens 4 gewonden. En dan tot slot het weer. Vanochtend trekt de hardnekkige bewolking in het noordoosten snel oostwaarts. Elders in het land schijnt de zon. Dankzij flinke zonnestralen loopt de temperatuur in de middag flink op. In het zuiden is het zelfs zomers warm met maxima rond de 25 graden of meer. En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
1: Live vanuit onze high-tech studio in Den Haag. Vahon Hindustani Radio.
0: जी हाँ, हमारे सुनने वालों, यहाँ तक थे भजन के प्रोग्राम और कुछ न्यूज़ कुछ बयाम अभी आप सुन रहे थे। यहाँ से हम प्रोग्राम कुछ चलाएंगे, कुछ हिले मिले जुले गीतों से हम आप लोगों को सुनाएंगे। और जैसे आप जानते हैं तो हमारा प्रोग्राम एक सवाल था, सवाल का हल करने वाले को आज मेरे पास वक्त है, वक्त भी नहीं है, हर एक फरमाइश को हम पूरा नहीं कर सकेंगे। शुक्रवार को हम सभी को प्रोग्राम, सभी को फरमाइश हम ज़रूर पूरा करेंगे। आज हम कुछ चलाएंगे कुमार शानू के गाना आप लोग के लिए, और हम ज़रूर जानते हैं कि आप लोग को ज़रूर पसंद आएगा कि ये गाने जो है, गीत गाने हम आप लोग को सुनाने वाले हैं कुछ अच्छी ढंग से है। कुमार शानू का आवाज़ हम सुनाएंगे आप लोग के। आप लोग जानते ही वो टाइगर है, टाइगर रहेगा और टाइगर भी है। ठीक है दोस्तों, हम चलते हैं। आप सब जानते हैं, आप सब चुन है द एवरग्रीन लव, द लव फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पे चुन है, जहाँ तक ये आवाज़ पहुँचे, हमारा ढेर सारा मोहब्बत पहुँचे, प्यार पहुँचे, पैगाम भी पहुँचे। काफ़ी लोग जो प्रोग्राम को सुनते हैं, हर एक को हम सलाम करते हैं, नमस्कार करते हैं कि आप लोग प्रोग्राम को सुनते हैं। काफ़ी लोग हैं जो ऐप मुझे कर दिया है, और एक सवाल था मेरा जो आप लोग का हल करना है। काफ़ी अंतर थे जो काफ़ी अच्छे है, काफ़ी अंतर थे जो सही नहीं है। इस जवाब का जो हल आप लोगों ने दिया है, सही भी है, सही भी नहीं है, और हम सिर्फ सही हल के हम आप लोग के गाने ज़रूर सुनाएंगे। आपको हक बनते हैं एक गाने मांगने के लिए, सिर्फ सही जवाब पे, सही सवाल पे। मेरा सवाल था कि गटई बा मूड़ी ना बा, हाथ है अमूरी ना बा, ई कुंची बा। अगर आप जानते हैं सही जवाब तो मुझे ऐप कीजिए। मेरा तार का नंबर खुल चुका है 0 0 3 3 3 2। और जो भी काम करवाना चाहते हैं आप, एक फरमाइश दवाना चाहते हैं और एक मौती का खबर दवाना चाहते हैं, जो भी काम आपको है Call kijie, studio kan nummer 070-36-522-477. Eek baar hem vier se herhaal kerte he. 070-36-522-247. Hemara studio khula he. Somwaar se lekar sukwaar tak. Subha 9 baje se lekar 5 baje tak. Aayye ya mujhe call kijie is number par. Thik hai dosto, hum le chalte he. Aapko देखा जाए कितनी हसरत है हमें और ये कुमार शानू साधना सरगम की आवाज़ है म्यूजिक जो बजाया गया है नदीम शरवन और इसका लायरिक्स जो है जो इस गाने को सजा करके लिख करके स्याही और हाथ जो लिखा गया है वो और कोई नहीं है ज़मीर हम आप लोग को सुनाते हैं कितनी हसरत है

जी हाँ दोस्तों, कितने हसरत है हमें दिल लगाने के कुमार शानू शादना सरगम। और यार नहीं खन तक के गाना है, गीत है जो हम आप लोग के सुनाने चाहते हैं। जी खे दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि हमारा तुम्हारा साथ 11 बजे तक है। दोस्तों कुछ वजह है कि हम 12 बजे तक नहीं रहेंगे। 10 बजे के बाद हम आप लोग के फरमाइश जरूर पूरा करेंगे। लोग जितने प्यार से ऐप से मुझे गाना मांग किया है, हम आप लोग के ज़रूर पूरा करेंगे। आप लोग के मांग को हम ज़रूर पूरा करेंगे। फाहौन हिंदुस्तानी रेडियो पे आप सब चुन हैं, ऐसे ही चुन रहना। ठीक है दोस्तों, हम ले चलते हैं मूवी धड़कन। यहाँ पे अलका याग्निक, कुमार शानू, उदित नारायण ने गाया है। हम आप लोग को सुनाते हैं सुबह का प्रोग्राम है। घड़ी की तरफ देखा जाए 5:09 हो चुका है। 20 जुलाई 2026 में हम चला चुका है। और जहाँ पे हम हैं देखते हैं बाहर, तो सरसराहट हवा चल रहा है। नदी के किनारे हम बैठे हैं, जहाँ पे लोग लव बोट में बैठकर कटिया लगाते हैं और मछली को पकड़ते हैं। और ये जो मछली पकड़ रहा है, मछली वाला गाना हम आप लोग को सुनाते हैं। दिल में ये कहाँ है, दिल से

कहते हैं मेरी धड़कनों को समझो, तुम भी मुझसे प्यार कर लो। क्या लिरिक्स है यार, जमीर ने इस गाने को लिखा है सजा करके, हाथ और कलम स्याही जो चलाएगा यार वो जमीर है, और क्या लिरिक्स है यार। ठीक है दोस्तों, हम आपको ले चलते हैं, हम सब सुनेंगे

जी हाँ जी हाँ जी हाँ दोस्तों, कहते हैं चेहरा क्या देखते हो, दिल में उतार कर देखो। सच में तो कहा है, दिल में घुस के देख कैसा दिल है, काला है या सफेद है। सच्ची तो कहा है मूवी सलामी नेकिन फिल्म नेकिन तक का है आशा भोसले कुमार शानुकाव आवाज लायरिक से समीर म्यूजिक नदीम शर्वन इसमें काम किया है अयूब खान और संयुक्ता सिंह। जी हाँ दोस्तों, आगे चलते हैं फिर से एक बार फिल्म धड़कन से निकाला हुआ ये गीत जो मैं आप लोग सुनाने वाला हूं जिसपे काम किया है अक्षय कुमार जिल्पा सेती। देखा जाए क्या गाना है, कहते हैं आई एम लव आई एम लव। जैसे आप सब द एवरग्रीन लव फाउनिस्तानी पिचून है वैसे आई एम लव मिल के हम सुनेंगे।

जी हाँ दोस्तों, आई एम लव मूवी धड़कन, और देखा जाए तो अलका याग्निक उदित नारायण का आवाज, नदीम शर्मा का म्यूजिक है, जमीर लाइरिक्स। ठीक है दोस्तों, हम चलते हैं कर न सके हम प्यार का सौदा। देखा जाए तो अलका याग्निक कुमार शानु का आवाज, फिर से एक बार नदीम शर्मा और म्यूजिक और जमीर जो लिखा है इस गाने को।

जी हाँ दोस्तों, कभी कभी जीती हुई बाजी को हारना पड़ता है ना, बस बेचारा हार जाते हैं। ऐसे बातें हो रहा है इस दुनिया में, जीती हुई बाजी हार जाते हैं लोग ना। ठीक है दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे आशा भोसले का वास कुमार शानू, नदीम शरवन और जमीर का लाइरिक से। हम आप लोग एक बार फिर सिलेक्ट करते हैं मूफी धड़कन, देखा जाए अलका याग्नि, फिर से लाइरिक से जमीर और कंपोजर है नदीर शफी शर्मा राठौर। चलो आपको लेकर चलते जिसमें अक्षय कुमार, शिल्पा सेठी, सुनील सेठी और महिमा चौधरी इस गाने पे डांस किया है और काफी हलचल मचा रखा था जब फिल्म धड़कन निकला था। आप लोग मिलके सुनते हैं।

जी हाँ दोस्तों, भी आप सुन रहे थे अलका याग्निक की आवाज मूवी धड़कन। और देखा जाए अक्सर ये दुनिया, अक्सर इस दुनिया में, जी हाँ दोस्तों, नदीम शर्मा। ठीक है दोस्तों, हम आप लोग के सुनाने वाले हैं, आगे चलते हैं। देखा जाए मूवी सदक, हम तेरे बिन कहीं रह नहीं पाते हैं। संजय दत्त, पूजा भट्ट इस फिल्म में काम किया है, अनुराधा पौल दुवर और मनहर उदास की आवाज है। लाइरिक्स और म्यूजिक जमीर जमीर और सुरेंद्र सुरेंद्र सती रनी मलिक इसमें, इसका हाथ है इस म्यूजिक में और लाइरिक्स में।

जहाँ दोस्तों हम तेरे बिन कहीं रह नहीं पाते, मूवी सदक और अनुराधा पौल द्वार मनहर उदास की आवाज अभी आप सुन रहे थे। चलो हम आप लोग के ले चलते हैं दिल है तुम्हारा अलकायनी कुमार शानुई नाइन की आवाज है। चलो हम ले चलते देखा जाए सॉन्ग्स मोहब्बत दिल का शतक और दिल है कि मांगता नहीं मूवी है अलका याग्निक कुमार जानू उदित नारायण के आवाज है। म्यूजिक नदीम शरवन और फिर से जमीर का लाइरिक्स है दोस्तों। चलो हम सुनाते हैं

जी हाँ जी हाँ जी हाँ दोस्तों, देखा जाए मूवी दिल है तुम्हारा मोहब्बत का ये स्वरूप, आल कायंगनी कुमार जानू और उदित नारायण की आवाज़ अभी आप सुन रहे थे। चलो हम आपके ले चलते हैं मूवी कसम नई कंतीन अख्तम तख्तक का ये गाना है, गाया गया है आशा भोसले, नितिन मुकेश, लाइरिक्स अनजान इंदौर और म्यूजिक है पप्पी लहरी का।

0: 21, 22 en 23 augustus. Voor meer informatie www.minimsummerfestival.nl.
1: जी हाँ दोस्तों, ये था कुछ न्यूज़ और कुछ रेखलम भी आप सुन रहे थे। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक था प्रोग्राम और एक घंटे का प्रोग्राम हम चलाएंगे कुछ अपने की तरफ से, कुछ नामंस हे लतीम फाहोन फाहोन हिंदुस्तानी रेडियो की तरफ से। हमारा जितना कोलेगा है सभी की तरफ से हम कुछ गाने भी सुनाएंगे आप लोग के। और पहला गीत जो मैं आप लोग को सुनाना चाहता हूँ वो है सुरेन भगवान दीन, जो उसका क्लिप निकल चुका है और हेमंदा का इस गाने को गाया है या दिल के सुनो। ये क्लिप कल निकला है दोस्तों और अभी मैं आप लोग के उसका आवाज़ में अंदाज में आप लोग के सुनाने वाला हूँ। और आप लोग के अगर आप लोग जा सकते हैं यूट्यूब पे और उसका क्लिप को देख सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं क्या अंदाज में गाया है। इसका म्यूजिक जो बजाया गया है, कंपोज किया गया है, वो और कोई नहीं है अशोक अयोध्या जो म्यूजिक को बजाया है, काफ़ी नाम कमाया है। वो तुनस्ती का जब आशनी गा रहे थे तुनस्ती में, तो उसका तुस्निस था कीबोर्ड बजा रहे थे तुनस्ती में। और आज हम सुरेन भगवान दीन के गाने आप लोग को सुनाते हैं और क्लिप को देखना चाहते हैं और लाइक करना चाहते हैं तो यूट्यूब पे जाइए और सुरेन भगवान दीन आपको ज़रूर मिलेगा यूट्यूब पे, जिसे हम आर्टिस्ट नाम है बीरबल, बीरबल के नाम से हम जानते हैं उसे। और काफ़ी अंदाज में इस गाने को गाया है, हम आप लोग को सुनाते हैं और उसके बाद हम चलाएंगे फरमाइशें, जो काफ़ी दो तीन फरमाइशें हैं, उसके बाद हम अपनी तरफ से कुछ गाने आप लोग को सुनाने वाला है।

जी हाँ प्यारे दोस्तों, जी हाँ प्यारे दोस्तों, ये था सुरेन भगवान दीन के अंदाज में गाया भाई सुरेन, क्या अच्छा गाया है, क्या आवाज में गाया है। अगर आप मुझे भी देखना चाहते हैं इस क्लिप में, मैं भी इस क्लिप में भाई सुरेन के साथ हूँ। अगर आप देखना चाहते हैं कौन है अनिल सारजू, तो देखिए मैं सुरेन भाई के साथ हूँ और क्या अच्छे इस गाने को गाया। क्लिप आप देख सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं, काफ़ी अच्छे गाना है। हेमंत कुमार हेमंत दादा का गाना इसने गाया है भाई सुरेन, बहुत अच्छे गाय रहा है, बहुत अच्छे इस गाने को गाया है, अंदाज में गाया है, सुर में गाया है। और बहुत हम सोचते हैं इसका म्यूजिक जो बजाया गया है न्यू स्टाइल में बजाया गया है, और भाई अशोक अयोध्या इस म्यूजिक को बजाया है, काफी अच्छा बजाया है। चलो दोस्तों, हम आप लोग के लिए चलते हैं नई मई का, जहाँ पे क्रिश भाई प्रोग्राम को सुनते हैं और सही जवाब को दिया मैंने, कहा है वो जवाब मैं अभी नहीं दूंगा। अबे जजे देबे तो ढेर मनई, हमें ऐप कर दे के ही अंत और था इस, तो हल जदे देबे तो सब कोई हमें हल के गाना मांग ले हरिक दे। ठीक है, हम इस काफ़ी लोग हैं जो इस प्रोग्राम को सुनते हैं, अगर आप सही जवाब को देंगे सही सवाल पे, सवाल था गटाई बा मुड़ी न बा हाथ है अमूरी न बा रारा वात इस दात कौन ची है। जब सभी जब हम जवाब दे देवे तत् लोग खत्म अकलक हो जाता शुक्रवार के, तब तक के लिए हम वेट करते हैं। ऐप कीजिए मेरा तार का नंबर 0043808333। तब तक के लिए हम चलते हैं नई मई की तरफ, जहां क्रिश भाई प्रोग्राम को सुनते हैं, भाव जी भी सुनते हैं, राम राम नमस्कार। और सही जवाब दिया है, मांग क्या है, हमने अपना सब कुछ खोया प्यार तेरा पाने के लिए, और काफ़ी अच्छा गाना मांगा है भाई भाई क्रिश और मुकेश की आवाज़ है, कल्याण जानंद जी का म्यूजिक है, इंदिवर का लाइरिक्स है। चलो हम देखते हैं, आपको सुनाते हैं

जी हाँ दोस्तों, दई मई खसे क्रिश सरजू क्रिश भाई जो प्रोग्राम को सुनते काफी पसंद करते हैं और मांग किया था, सही जवाब को दिया, मांग किया था हमने अपना सब कुछ खोया, मूवी सरस्वती चंद्रा और सॉन्ग्स बाय मुकेश। कल्याण जी आनंद जी का म्यूजिक है इन दिवर का लाइरिक्स है दोस्तों। ठीक है भाई क्रिश, हम आपका गीत आपके घर तक पहुंचा दिया, कान तक पहुंचा दिया, बहुत बहुत धन्यवाद का प्रोग्राम को सुनते हैं क्रिश भाई, मुझे बहुत पसंद है कि आप प्रोग्राम को सुनते हैं और लाइक भी करते हैं, फाहौन हिंदुस्तानी रेडियो पे आप चून है। जी दोस्तों, हम चलते हैं आगे। रॉय मंगली इस वक्त ट्रेन में है और खुरुनिंगन जा है। ठीक है रॉय मंगली, खूब घाम है, खूब अब तो सब जंगल दिख जाइए ना। ठीक है, और सही जवाब को दिया है और मांग किया है, और देखो जाए पद्मश्री मोहम्मद रफी का एक निकाला हुआ गाना है, और क्या अच्छी गाना को मांग किया है। मुझे तुमसे मोहब्बत है मगर मैं कह नहीं सकता हूँ, मूवी पहचान देखा जाए, हसत जाए पूरी का म्यूजिक है और लाइरिक से मलिक। ठीक है, हम आप लोग

सुनाते हैं पद्मश्री मोहम्मद रफी की आवाज और जा रहा है भाई रॉय इस गाने को लेके जा रहा है दम से क्रू निगन सबके सलाम बोल दिए दुआ कर दिए हुआ पर भी और तने बकैन कर दिए हुआ भी चाहे फाहून हिंदुस्तानी रेडियो के सब चून है वो सब भी सुन सकते हैं। रॉय भाई आपका गाना आ रहा है हमारे साथ दे रहा है हमारा कारो को फरमासी टेक चांस में वो अच्छी बहुत अच्छी गाते हैं और काफ़ी दिन से हमारा उसे दोस्ती है सदा फाहून को सुनते हैं और पसंद भी करते हैं। तो लीजिए एकदम ट्रेन में हम तो कतिन गनवा पठा लोचा मोह से सुनिए आपका नाम है भाई मंगली

जी हाँ दोस्तों, मुझे तुमसे मोहब्बत है मगर मैं कह नहीं सकता। ऐसे होता है, मूवी पहचान से निकाला हुआ गाना है। ठीक है भाई रॉय, आप खड़े होने जा रहे, प्यार से चाहिए हील फेनरेस और प्यार से फोन को सुनते जाइए। रॉय ने कहा मैं प्यार से रेडियो फोन को सुनते सुनते चला जाएंगे। ठीक है रॉय, बहुत बहुत शुक्रिया, हम चलते हैं। देखा जाए एक फरमाइश और है, वो है सुनीता बुधाई जो जनक शहर से सईद पारक से प्रोग्राम को सुनते हैं, सही जवाब को दिया है और मांग किया है। दिल के टुकड़े टुकड़े कर मुस्कुराते चल दिए। देखा जाए ये है फिल्म दाता नेक सीवंत का, जिसमें विनोद मेहरा काम किया है। और देखा जाए देखिए तो के इसे बजाए से और म्यूजिक है उषा खन्ना के और लिरिक्स तो न दिखाए मैं। ठीक है हम चलाते हैं। सुनीता आप प्रोग्राम को सुनते हैं, पसंद भी करते हैं, सही जवाब को दिया है और आपका मांग मैं पूरा करता हूँ। वादा करके नहीं भुलाऊंगा, वादा करके निभाना हम जानते हैं। आपके नाम दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुराते चल दिए। देखा जाए जेसु और मूवी है दाता नहीं कहती नहीं सही फन तक के

जी हाँ दोस्तों, दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुराते चल दिए। अभी आप इस गाने को सुना है और मांग क्या है सुनीता बुधाई ने, क्या गाना को मांगा है सुनीता जी। ठीक है, आप प्रोग्राम को सुनते ऐसे ही सुनते रहना और सही जवाब भी देना। ठीक है दोस्तों, यहाँ से हमारा ऐप का लाइन क्लोज हो चुका है। अब मुझे कल से आप ऐप कर सकते हैं, कल से आप मुझे ऐप कर सकते हैं। और सवाल था, मेरा सवाल है कि गटाई बा मुरीना है, हाथ है अमरीना बा कुंची बा रारा वात इस दात। सही जवाब देगा तो आप गाने को मांग कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहां से हम अपना प्रोग्राम को चलाएंगे। ये जो गाना मैं अब चुन पे रखा हूँ, चुन करके रखा है, ये नामस इधर ही है, नामस फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो के हमारा सारी कुलेखा की तरफ से फाहुन करो को फरमासी के लिए और तय का चैंस करो को फरमासी जो हमारा ग्रुप है, हर अतवार के हम कारा को करते हैं और उन सब हमारा जो लेद है सबके लिए। और जो भी इस प्रोग्राम को सुनते हैं जहाँ तलक जितने दूर तलक की आवाज़ जाते हैं, हम उन सब के लिए नामस फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो से हम इस गाने को आप लोग के नाम करते हैं। ये खामोशियाँ ये तन्हाई पद्मश्री मोहम्मद रफ़ी का आवाज़ है और आशा भोसले, लायरिक से राजेंद्र कृष्णा और म्यूजिक है रफ़ी। मूवी हैगा ये रास्ता है प्यार की, हम सुनते हैं अशोक कुमार सुनील दत्त और लीना नायतू इसमें काम किया है। हम नामस इधर इन, नामस इधर इन, हम लोग सबके खतिन गाना हम दाय कर लो, नामस द एवरग्रीन लव द लव फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो की तरफ से, हमारा पूरा लेदा की तरफ से।

जी हाँ दोस्तों, ये खामोशियाँ ये तन्हाइयाँ, पद्मश्री मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ और आशा भोसले। ये रास्ता है प्यार के नेकंती द्रियन शस्त्र का मूवी है। ठीक है दोस्तों, हम आप लोग के लिए चलते हैं एक दिल के टुकड़े हजार हुई मिल के। हम सुनेंगे देखा जाए प्यार के जीत नेकंती अख्तम फिर तक के गाना है, पद्मश्री मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ है।

जी हाँ दोस्तों, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा, लेकिन तीन अख्तम फिर तक का ये जो गाना है, मूवी है प्यार की जीत, पद्मश्री मोहम्मद रफी की आवाज़, अभी आप सुने थे दर्द भरी आवाज़ और दर्द भरी गीत थे। ठीक है दोस्तों, हम चलते हैं, ले चलते हैं नेकन तीन जीफनस तक में, मूवी दीवाना, राज कपूर सायरा बानू ने इसमें काम किया है और करोड़ों का दिल बहलाने वाला मुकेश की आवाज़ है दोस्तों, तारों से प्यारे।

जी हाँ जी हाँ दोस्तों, हसरत जयपुरी का लाइरिक से और शंकर जय किशन का म्यूजिक अभी आप सुने थे। तारों से प्यारे दिल के इशारे मूवी दीवाना नेकती जई फिल्म सस्तक की मुकेश की अवा राज कपूर और सायरा बानो इस फिल्म में काम किया है। चलो हम आप लोग के लिए चलते हैं, देखा जाए मेरे नैना सावन भादो मूवी महबूबा। किशोर कुमार की आवाज है, म्यूजिक कंपोजर है एर दे बर्मन, लाइरिक से आनंद बक्सी का जिसमें हरेश खन्ना हेमा मालिनी ने काम किया है।

हम आपसे जरूर माफी मांगते हैं, मैंने कहा था कि सुरदा की आवाज, लेकिन ये तो पद करो का दिल जीतने वाला लता मंगेशकर थे। ठीक है दोस्तों, एक आखिरी गाना हम चलाएंगे नमस पूरा टीम की तरफ से हर एक के लिए, और देखा जाए ये है, ये भी है पद्मश्री मोहम्मद रफी की आवाज और सुमन कल्याणपुर के गाना है दोस्तों। तुझे देखा तुझे चाहा तुझे पूजा मैंने, छोटी सी मुलाकात नहीं कहती, सैफ नंद शस्त्र का गाना है दोस्तों। देखा जाए जो इसका म्यूजिक बजाया है वो और कोई नहीं, शंकर जय किशन है, हसरत जय पुरी का हाथ कलम और स्याही से लिखा गया गाना है। हम आपको सुनाते एक आखिरी गाना चलेगा, उसके बाद हम न्यूज और कुछ रिक्लामों की ओर चलेंगे। तब तक के लिए हम आप गाना चलाते हैं, अभी हम आपसे बात करते हैं।

0: जी दोस्तों, तुझे देखा, तुझे चाहा, तुझे पूजा मैंने। छोटी सी मुलाकात नहीं थी, सही फिल्म सस्त का ये मूवी है। पद्मश्री मोहम्मद रफी का आवाज और सुल्तान कल्याणपुरी, शंकर जय किशन का म्यूजिक है, और जो हाथ जो सिहाई चला गया है इस गाने पे वो हसत जयपुरी है। इस पे काम किया है उत्तम कुमार और फियंती माला ने। ठीक है दोस्तों, मैं ये बताना चाहता हूँ आज का प्रोग्राम यहाँ तक थे, हमारा तुम्हारा साथ 11 बजे तक थे। इजाज़त दीजिए मुझे भी, आने और जाने के एक वक्त भी होती है। मुझे एक घंटा मुझे प्रोग्राम और था 12 बजे तक, लेकिन मुझे भी कुछ करना है, इसलिए 11 बजे तक हमारा प्रोग्राम था। और जहाँ तक ये आवाज़ भी पहुँचा है वहाँ तक सभी को मैं राम राम नमस्कार कहते हैं। ऐसे ही फोन हिंदुस्तानी रेडियो को सुनते रहना और पसंद करते, हम जानते हैं। काफ़ी काफ़ी जो मैंने सवाल किया था, काफ़ी जवाब आया है, सही जवाब है, सही जवाब भी नहीं है। शुक्रवार को हम आएंगे, शुक्रवार को हम रहेंगे रेडियो पर, आप जानते ही 11 बजे से 3 बजे तक हम रहेंगे। सभी को जो फरमाइश से हम जरूर पूरा करेंगे। और यहां से हम आप लोग के न्यूज से ले जाते हैं, न्यूज सुनते हैं और कुछ रिक्लामा सुनते हैं, उसके बाद हम आते हैं कुछ बात फिन करेंगे और वहां से हम कहेंगे फिर मिलेंगे। बाय बाय सुभाष भाई, अभी हमें थोड़ा सा टाइम दीजिए।
1: कातुन कांतोर आनंद राम सूद वकालत का काम करता है। जब भी आपको एक बढ़िया वकील की जरूरी पड़ गया है,
2: ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde, algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht, personen- en familierecht zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning, jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
3: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: U luistert naar Hindustani Radio, Radio Fahon.
5: Digitale radio, fahonfm.nl.
6: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Dit jaar kiezen meer Nederlanders voor een elektrische auto naar de vakantiebestemming door de oplopende brandstofkosten. Snellaadbedrijf Fastnet merkt dat ruim de helft van de eigen klanten deze zomer met de accu op pad gaat. In juli steeg het aantal buitenlandse laadsessies door Nederlandse reizigers aanzienlijk. Het zuiden van Japan is opgeschrikt door een zware aardbeving in de prefectuur Kumamoto. De kracht bedraagt 7 op de schaal van Richter. De eerste metingen wijzen uit dat de beving een kracht heeft van 7.1. Direct volgden er waarschuwingen en een tsunami-waarschuwing. Fitnessketen Basic Fit groeit hard en telt inmiddels 6,1 miljoen leden door onder meer uitbreiding van het aantal vestigingen. Het bedrijf presteert sterk en ziet het gemiddelde aantal lidmaatschappen per club stijgen tot zo'n 3000. Dit komt vermoedelijk door ruimere openingstijden waarbij sommige vestigingen dag en nacht open zijn. Na jaren onderzoek zijn de identiteiten bekend van de twee mannen van wie in 2023 lichaamsdelen op Texel aanspoelden. Het gaat om Afghanen van 20 en 27 jaar. Een strandjutter deed destijds de lugubere fonds. De politie vermoedde al snel dat het ging om verdronken bootvluchtelingen uit Frankrijk. In november verschijnt een 18-jarige jongen voor de rechter in België wegens plannen voor een terroristische aanslag tijdens de Pride in Leuven. Via Telegram zocht hij naar wapens en sprak hij met een undercoveragent. Na maanden voorarrest is hij inmiddels vrij in afwachting van het proces in november. En dan tot slot het weer. Vanmiddag schijnt de zon flink, ook wel wat wolkenvelden. Het wordt een stuk warmer dan voorgaande dagen, maxima van 23 graden in het noorden, 27 graden in het midden van het land en lokaal 30 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
7: Adverteer nu bij Fahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
0: जी, हमारे सुनने वाले अभी आप सुन रहे थे कुछ न्यूज़ और कुछ रिक्लामा। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। यहां तक हमारा प्रोग्राम, हमारे हिस्से का प्रोग्राम खत्म हो गया है। हम आपसे मिलेंगे फ्रेडा के शुक्रवार को, हम जरूर आपसे मिलेंगे और बहुत बातें करेंगे। ऐप द्वारा बहुत गाने हैं जो मुझे आप लोग तक पहुंचाना है, और यहां से हम कहते हैं बाय बाय ज्वाइस भाई, और यहां से हमारा कॉलेज का जॉनी नंबर वन प्रोग्राम को लेते हैं, और आप सुनते रहना प्रोग्राम को।

सुंदर अति सुंदर कृष्ण भजन यहाँ से मिलकर हमने श्रवण कर ली है फाउन हिंदुस्तानी रेडियो प्रोग्राम में। भक्तिमाला प्रोग्राम यहाँ से जिसमें हम गोटा लगाते हैं एनर्जी अपलाद करने के लिए, ताकि हम अपना जीवन के साथ साथ ये दिन जो मिले हैं इसे हम बहुत प्यार के साथ बहुत खुशी के साथ इसे गुजारें। कम चीज़ों में भी बड़ी खुशी मिल सकती है, कम चीज़ों में बड़ी खुशी मिल सकती है, बस नज़रिया चाहिए। जिसने संसार को बदलने की कोशिश की है, जिसने संसार को बदलने की कोशिश की है वो हार गया है। जिसने संसार को बदलने की कोशिश किया गया है, पर जिसने खुद को बदल लिया है वो जीत गया है। और जो जीता वही

के लिए, जिसने जीवन का वही रिश्ता सच्चा है मेरे दोस्त, कि जीवन का वही रिश्ता सच्चा है जो पीठ पीछे भी सम्मान दे। कितना सुंदर बात है ना, परमात्मा दोनों तरह से आजमाता है हम सभी को। हाँ, परमात्मा दोनों तरह से हम सभी को आजमाता है, कभी देकर और कभी लेकर। सुप्रभात हो, सुप्रभात हो आज के दिन।

मार रतते रतते मदर इंडिया के ये फिल्मी गाना के धुने बहुत अच्छा लगता है सुनने के लिए। नगरी नगरी द्वारे द्वारे ढूंढू रे सवरिया रामा रामा रतते रतते। बदल जाओ मेरे दोस्त, बदल जाओ वक्त के साथ, या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, मजबूरियों को मत कसो, हर हाल में चलना तो सीखो मेरे दोस्त।

0: शाम।
1: अति सुंदर मेरे दोस्त, आपके लिए पॉजिटिव एनर्जी ओम उपतलादन। एक उम्र के बाद मेरे दोस्तों, उस उम्र की बात उम्र भर याद आती है। एक उम्र के बाद उस उम्र की बात याद आती है, उम्र भर याद आती है, पर वो उम्र फिर उम्र भर नहीं।

सूर्य देव जैसे सूर्योदय के होने होते ही अंधकार दूर हो जाता है, वैसे ही मन की प्रसन्नता से सारी बाधाएं शांत हो जाती है। जैसे सूर्य उदय के होते ही अंधकार दूर हो जाता है, वैसे ही मन की प्रसन्नता से सारी बाधाएं शांत हो जाता है।

अवश्य तीनों लोक के मालिक कृपा बरसा दो ना। सुप्रभात है मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे प्यारे सुनने वालों। किसी को खुशी देकर यदि आप खुश होते ना तो मेरे दोस्त, तो यकीनन मानिए आप बहुत खूबसूरत इंसान हो। हंसते रहिए मेरे दोस्त, मेरे प्यारे प्यारे सुनने वालों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपका दिन अच्छा हो या बुरा, वह पर ये पल जो है वो जरूर से अच्छा जो हम शुरुआत करेंगे तो अच्छा ही होगा। मेरे राम कहाँ हो प्रभु जी।

कितने दर्द भरी बयान, कितनी दर्द भरी पुकार हम अपने इष्ट से करते हैं और अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि वही एक तो है जो हमारा सुनता है। दिल से ये दुआ है, प्रार्थना है मेरे दोस्त, कि ईश्वर हम सबको वो खुशी दे जिसे आप और मैं रोज़ ईश्वर से, अपने प्रभु से, अपने इष्ट से

0: महंगी चीज है आपका वर्तमान। वर्तमान जो एक बार चला जाए ना दोस्त, तो फिर पूरी दुनिया की संपत्ति से भी हम उसे खरीद नहीं सकते। और वर्तमान क्या है? हाँ, वर्तमान ये है कि आज इस वक्त इस पल, ये पल जो है यही हम सबके वर्तमान है। ये गुजर गया तो गए।
1: जय बजरंग।

जय बजरंग बली, दिल से फैसला करो मेरे दोस्त कि तुम्हें क्या करना है। दिल और दिमाग से फैसला करो कि तुम्हें क्या करना है। दिल से फैसला करो कि तुम्हें क्या करना है। दिमाग तरीका निकाल ही लेगा। दिल और दिमाग के ये बात है कि हम दिल से सोचे और दिमाग उसका तरीका निकाल देता है। आपका दिन अच्छा हो और अच्छा हो कि आप जहाँ भी हो, जैसे भी हो, जरूर से खुशहाल में हो। अपने आप को ख्याल भी रख।

सुनाएं आपको लता और रफी जी एक बार फिर, और वही मशहूर फिल्म मैं चुप रहूंगी से निकाला गया यह सुंदर सा गीत। और सुनने वालों, आप हो जो गीत और संगीत के प्रेमी, तो यहाँ से फाउन हिंदुस्तानी आपके लिए ये सुंदर सुंदर सा गीत जो सिलेक्ट करके रखी है

कितना प्यार भरे ये सुंदर सा गीत है जो आपने सुने। जी चाहता है कि बस सुनते ही जाए, सुनते ही जाए, सुनते ही जाए। जी नहीं भरता ऐसे ही सदाबहार गीतों जो आपके लिए यहाँ से सिलेक्ट करके रखी गई है, आपके लिए बिल्कुल बिल्कुल एकदम से तैयार करते। आप है संगीत और संगीत के प्रेमी, तो यहाँ से लेकर चलते हैं एक बार फिर ऐसे ही सुंदर गीत, और इस बार है मन्ना दे लता जी के साथ में।

सुनाए आपको मन्ना दे और साथ रही थी लता जी। बिल्कुल आपने सुने सही। आज ही जी लो, आज ही जी लो खुल कर यारो, आज ही जी लो खुल कर यारो, कौन जाने कल की क्या कहानी। हंसो मुस्कुराओ, हंसो मुस्कुराओ, फिर न होगी ये दिन सुहानी।

सुनो चंपा और सुन तारा, लता और किशोर जी ने सुनाए, फिल्म का नाम है अपना देश। जी हाँ, जीवन की कहानी प्यार से लिखते चलो। जी हाँ सुनने वालों, जीवन की कहानी प्यार से लिखते चलो, मीठे बोल बोलते रहो, रिश्ते नए बनाते चलो। जीवन की कहानी को रंगीन बनाते, सजाते और संवारते चलो। क्या लाए थे सुनने वालों, हम क्या लाए थे जो हम लेके जाएंगे।

जीवन के दो पहलू हैं। हाँ, जीवन है दो पहलू से बने हुए, जैसे रात और दिन, आज और कल। और कह रहा है कि मुझे नहीं मतलब कौन किसके साथ कैसा है, मुझे नहीं मतलब कौन किसके साथ कैसा है, जो मेरे साथ अच्छा है वो मेरे लिए अच्छा ही है।

कि जिंदगी में ना जाने कौन सा बात आखिरी होगी, जिंदगी में ना जाने कौन सा बात आखिरी होगी, ना जाने कौन सी रात आखिरी होगी। मिलते जुलते बातें करते रहो यारो एक दूसरे से, मिलते जुलते बात करते रहो एक दूसरे से, ना जाने कौन सी मुलाकात आखिरी होगी।

जाने ना। लता जी से आपने सुने फिल्म का नाम इंतकान। इंतकान सुने वालों, हाँ इसमें हेलन भी अपना खूब कमाल की है।

खुशी एक एहसास है, खुशी एक एहसास है जिसकी हर किसी को तलाश है। गम एक ऐसा अनुभव है, गम एक ऐसा अनुभव है जो सबके पास है। जी हाँ, गम एक ऐसा अनुभव है जो सबके पास है, मगर जिंदगी तो वो ही जीते हैं जिसको खुद पर खुद विश्वास है। रेडियो स्टेशन इन टाउन, हाँ सुनने वालों, फाउन हिंदुस्तानी रेडियो जनता के नाम। अजो देन हाग न्यूटन स्ट्रीट नंबर 25 पर है। देन हाग न्यूटन स्ट्रीट 25 पर जो इनका स्थान है, सोफिया देगन कॉमन फन सेल्फ हुड, Zoveel dingen komen vanzelf goed. Zorg dat je leeft. Denk er niet te veel na. Word niet ziek door jezelf te veroordelen. Verteer jezelf niet. De dingen die niet kunnen veranderen. Mensen niet kunnen veranderen. Je maakt jezelf kapot. Je dagen, je kansen, je leven, de mensen om je heen. Zoveel dingen komen vanzelf goed. Zorg dat je leeft.

मोनिका, ओ माय डार्लिंग, जिसका नाम मोनिका है तो ये गीत उनके लिए भी पेश किया गया है। साथ ही साथ जिसका नाम मोनिका भी नहीं है तो ये सुंदर सा गीत भी आपके लिए है जो यहाँ से नशर किया गया है। देखो तो फिल्म का नाम है कारवाने दिन ए नसीफ तक, ये सदाबहार गीत जो आपके लिए पेश किया जाता है। शब्द शब्द संभाल कर बोलिए, शब्द शब्द संभाल कर बोलिए, शब्द में एक नहीं हाथ नहीं, शब्द के नहीं हाथ नहीं पाँव, शब्द शब्द संभाल कर बोलिए, शब्द के ना तो हाथ है ना तो पाँव, एक शब्द है औषधि और एक शब्द है घाव। बातों से लोगों को जी जीत सकते हैं और बातों से ही लोगों को भी घायल कर सकते हैं। ऐसा भी है कि terwijl we dingen uitstellen, terwijl we dingen uitstellen, gaat het leven voorbij. कुछ नहीं अर्जताल करना सुनने वालों, अगर हो सके तो आज ही कर दो। जो कहते कि जो कल करना है तो आज करो, जो आज करना तो अभी कर डालो, क्योंकि कल का पता किसी को नहीं है। और ये भी आपको भी एक शक्ति भी देगा अगर आप ये कहेंगे कि हम कहते हैं कि हो देश से आतेत इन खदाख्तन, हो देश से आतेत इन खदाख्तन, एंड दैट सेन एक वेल है या एक वेल है एक कान है लुप्त में। ये एक चाबी है, पॉजिटिव चाबी है आपके वास्ते। अगर आप कहीं ऐसे हैं जहाँ पर आप कुछ करना चाहते हो और लुक नहीं होते, तो आप ये जरूर से कहना कि एक वेल है एक कान है लुक में। और इसके साथ सुनने वालों, हम आपको लेकर चलते हैं फिल्म शोले की तरफ।

महबूबा महबूबा सुनाई आपको, हम आपसे बता दें आर डे बर्मन, जी हाँ आर डे बर्मन ये गीत को गाए हैं और म्यूजिक भी डायरेक्ट तक की है आर डे बर्मन, जी हाँ सुनने वालों। और जैसे कहा कि फिल्म का नाम है शोले, शोले नहीं खाती फैफन से फंत, वही मशहूर वही है तक फिल्म।

शादीशुदा घर, अनहुलक इस आस अन हाउस। हाँ, ऐसे फर्क लाइक कर सकते हो कि अनहुलक इस आस अन हाउस, तो आप इसका मतलब हम आपको बताएंगे। अस अन लंप है मित मेर दूध, आपके घर में जो आप एक एक चिराग जो काम नहीं करते, जो नहीं जलते, अस अन लंप है मित मेर दूध खाए नित अब सुख मार अन न्यू हाउस मार ये रिपेयर द लंप। एक दो चार शब्द है मार इसमें कितना गहराई है। अनहुलक इस आस अन हाउस आस अन लंप है नित मेर दूध खाए नित अब सुख मार अन न्यू हाउस मार ये रिपेयर द लंप। संतोष मन, संतोष मन दुनिया का सबसे बड़ा धन है। संतोष मन दुनिया का सबसे बड़ा धन है। आप सुनते हैं फाउन हिंदुस्तानी रेडियो।

जय हो राधे श्याम की, जय हो सियाराम की, और जय हो बंबई धाम की।

आपस में जंग, हाँ आपस में जंग, हाँ आपस में जंग, जय घुमा के। अरे समंदर में जैसे है घुल गई भंग, ये रंग देख के मैं हो गया दंग। तो क्या समझे

सुनने वालों की खिदमत में अदाबर्ष नमस्कार। आज जबकि मंगलवार है, जुलाई के 28 तारीख, जो बीमार है, लाचार है, खास करके हॉस्पिटल के अंदर है, तंदुरुस्ती के लिए दुआ करते हैं। जिनके घर में शादी या सालगिरह है, फाहो रेडियो के फूल टीम के तरफ से मुबारकबाद और बधाई पेश हो। जो लोग इस वर्ष सफ़र पर जा रहे, सफ़र मुबारक हो। जो लोग गैर मुल्क से नीदरलैंड में आए, उसको मैं खैर मकदम कहती हूँ। हो सकता है कि किसी के घर पर कोई दुख की घड़ी आन पड़ा, तो यकीनन हम सब आपके गमी में शरीक है। आज के प्रोग्राम में आप क्या क्या इंतज़ार कर सकते हैं? इश्तिहारे, कुछ मिले जुले नगमे, नए और पुराने, सब मिला जुला कर कोशिश करूंगी 3 बजे तक आपकी खिदमत करने को। खिदमत करने के लिए इस वक्त स्टूडियो में हाजिर है खुद मैं, बीबी साहिबा रहीम बख्श। 3 बजे तक प्रोग्राम को सुनते रहना। उम्मीद करती हूँ कि जिस तरह से प्रोग्राम को पेश करेंगे, आपको जरूर पसंद आएगा। अभी आपने मुझसे पहले शांता के जरिए से प्रोग्राम सुन रहे थे, चलिए मेरे हिस्से का प्रोग्राम के ओपनिंग सिलेक्शन आप सुनेंगे।

वो कौन ऐसी मुश्किल है जो ना हो सके आसान। अभी आपने मेरे हिस्से का प्रोग्राम में ओपनिंग सिलेक्शन पद्मश्री मोहम्मद रफी से सुन रहे थे।

और दिल बहलता है आपके आ जाने से। अभी आपने साधना सरगम और मोहम्मद अजीज से गीत सुन रहे थे रेडियो फाहन के मंगलवार के शाम के प्रोग्राम में।

हसीन हसीन वादियों, उनसे कह दो कि जिसका था तुम्हें इंतजार वो आ गया। अभी आपने अनवर हुसैन से गीत को सुन रहे थे रेडियो फाहून के मंगलवार के शाम के प्रोग्राम में। आप फाहून रेडियो पे चून है। इसमें देखा जाए तो 3 मिनट बाकी है 1:30 बजने में।

दिल तुझे दिया था रखने को, तूने दिल को जला कर रख दिया। किस्मत ने देखी यार मेरा दिल तड़पा के रख दिया। अभी आपने मुकेश से गीत सुन रहे थे, फिल्म का नाम है मलहर।

प्रीतम तुम मेरे रहोगे सदा, ये वादा करो। अभी आपने सुरेश वरकर और उषा खन्ना से गीत को सुन रहे थे रेडियो फाहुन के मंगलवार की शाम के प्रोग्राम में।

भियारों ने मुझे बुलाया, भी आपने पद्मश्री मोहम्मद रफी से गीत सुन रहे थे, संगीतकार राजेश रोशन और इस गीत का लेखक है अमित खन्ना। बेवफा मिलता है, बेवफा मिलता है, वफा मिलता नहीं, दर्द मिलता है, दुआ मिलता नहीं,

वो दिल कहाँ से लाऊं, तेरी याद जो भुलाए। अभी आपने लता मंगेशकर से गीत को सुना, इसमें देखा जाए तो 1:45 का वक्त है, आप फाहों रेडियो पर चुने।

हम भी न माने और तुम भी न माने। अभी आपने आशा भोसले और सबीर कुमार से गीत सुन रहे थे रेडियो फावन के मंगलवार की शाम के प्रोग्राम में। मोहब्बत को मेरी तूने दौलत समझकर, मोहब्बत को मेरी तूने दौलत समझकर इकरार किया। दौलत नहीं तो फिर क्यों मेरे मोहब्बत से इनकार किया।

दिल की अरमा आंसुओं में बह गए, हम वफा करके तन्हा ही रह गए। अभी आपने सलमा आगा से गीत को सुना।

0: नहीं,
1: लड़का आगे बढ़ता है,
0: हाँ।
1: लड़की पीछे हटती है,
0: फिर
1: लड़का लड़की को पकड़ लेता है,
0: फिर
1: लड़की शर्माकर मुस्कुरा दे तो पर
0: नहीं समझा
2: अबे न

मेरी पतली कमर में हाथ डाल दे। अभी आपने किशोर कुमार और आशा भोसले से गीत को सुना। इसमें देखा जाए तो 2:07 व्यतीत हो चुका है। आप चून है रेडियो फाहुन पर।

लाख तारे आसमान पर एक मगर ढूंढे न मिला। फिल्म का नाम है हरियाली और रास्ता।

धीरे धीरे बोल कोई सुन ना ले। अभी आपने मुकेश और लता मंगेशकर से गीत को सुना। सुंदरता का बहता सागर है तू, सुंदरता का बहता सागर है तू, तेरे लिए है ये रूप की बादल, आसमां से तारा तारे तोड़कर तेरी मांग सजाऊं और सारी खुशियां तेरे कदमों में निछावर करूं।

नीली नीली घटा भीगी भीगी नशा। अभी आपने मुकेश और साथ में आशा भोसले से गीत सुन रहे थे। संगीतकार उषा खन्ना और इस गीत का लेखक है मनोहर।

अद्भुत है मिलन की साथी चले आओ। अभी आपने पद्मश्री मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर से गीत सुन रहे थे। संगीतकार एरदेव बर्मन और इस गीत का लेखक है मजरू सुल्तान।

दिल तूने दिया और दिल मैंने लिया, फिर भी दुनिया जले तो हम क्या करें। अभी आपने मुकेश और गीता दत्त से गीत को सुना है, इसमें देखा जाए तो ढाई बज रहा है। हमारा और आपका मिलन 3 बजे तक है, 3 बजे के बाद रेडियो फाहुन के अनाउंसर साथ ही प्रोग्राम को ऑफर लेगा।

0: तेरे जैसा यार कहाँ कहाँ ऐसा यार आना। अभी आपने किशोर कुमार से गीत को सुना।
1: अरे जल गई जल गई जल गई।

दुनिया जलती है तो उसे जलने दो और ये प्रेम का रिश्ता चलने दो। अभी आपने किशोर कुमार और आशा भोसले से गीत को सुना।

दुनिया जब जलती है तो कितना मजा आता है। अभी आपने लता मंगेशकर से गीत सुना, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और इस गीत का लेखक है आनंद बख्शी।

साथिया नहीं जाना कि जी ना लगे। अभी आपने पद्मश्री मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले से गीत सुन रहे थे, फिल्म का नाम है आया सावन झूम के।

अफसोस की बात है कि गीत को यहीं से मुझे रोकना पड़ा। इसमें देखा जाए तो 3 मिनट बाकी है 3 बजने में।

और ये जाना पहचाना चून है, इसका मतलब यही होता है कि मेरे हिस्से का प्रोग्राम यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने को आया। आज आपकी खिदमत किया खुद में बीबी साहिबा रहीम बख्श, आपने एक से अभी तक हमारा साथ दिया, साथ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर कुदरत ने चाहा तो आने वाले मंगल को अपना मिलन होगा और हमारे बाद रेडियो फाहून के अनौंसर साथी के जरिए से आप प्रोग्राम को बाकी के सुनेंगे। तमाम सुनने वालों की खिदमत में खुदा

रे मेरे बीच, आपके और मेरे बीच कुछ आखरी नहीं है सिवाय आखरी सांस के। तो आपको हम लेकर चलते हैं अदनान सामी की आवाज में।

सारे दीवाने ओ दीवाने, गोल्डन मेलोडीज ऑफ आनंद ने, गोल्डन मेलोडीज हम देखे तो अदनान साहनी जी की, जी हाँ, और साथ दे रहे थे आशा भोसले जी। वो नहीं जानता कि मेरे लिए क्या है वो नहीं जानता कि मेरे लिए क्या है वो, मेरे जिंदगी का आधार और मेरी सांसों का तार है वो। कितने भी लड़ ले झगड़ ले पर मेरे लिए, जी हाँ, पर मेरे लिए बस प्यार है वो। सुनेंगे अल्ताफ राजा की आवाज में।

जो उनसे हमने सुने कि तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ये माना कि महफिल जवां है और हसीन है। अच्छा सुंदर सा गीत इस दिवस में हमने यहाँ से सुने हैं। सबको बहुत सारे प्यार मिले। Het leven is zo voorbij. Het leven kan zo voorbij gaan, voorbij zijn. Geniet van je leven, zeg ik. Geniet van je leven zoals jij het wilt. En niet zoals een ander dat wil. Het zijn de kleine dingen in het leven die je blijdschap en liefde geven. ऐसे जियो, ऐसे जियो कि अपने आप को पसंद आ सको। ऐसे जियो कि अपने आप को पसंद आ सको। दुनिया वालों का क्या, दुनिया वालों को पसंद तो पल भर में बदल जाती है।

दिल दे दिया है जान तुम्हें देंगे, दगा नहीं करेंगे सनम। सुनाई हमको आनंद राज आनंद, जी हाँ आनंद राज आनंद से हमने सुने ये सुंदर सा गीत और निकाला गया फिल्म मस्ती से। Als gewone dingen ineens niet meer gewoon zijn, ik barreer. Als gewone dingen ineens niet meer gewoon zijn, besef je hoe bijzonder gewone dingen zijn. Om met elkaar overweg te kunnen, heb je niet dezelfde ideeën nodig, maar hetzelfde respect. कहते कि हमें जिंदगी का हिस्सा बनाए रखना, बस दूर होके भी दूरी ना लगे इतना सा रिश्ता बनाए रखना। ए इश्क मैंने सुना था कि तू अंधा है, फिर रास्ता मेरे दिल का बताया किसने।

सोनू निगम की आवाज में हमने सुने कि सब कुछ भुला दिया। फिल्म का नाम हम देखे तो हम तुम्हारे हैं सनम, हम तुम्हारे हैं सनम, उसी फिल्म से ये सुंदर सा गीत हमने सुने सोनू निगम

0: प्यार करे मुझसे, प्यार करे मुझसे इजहार करे किसी और से, खुदा करे जिसे उसे हार करे वो भी प्यार करे किसी और से। आरंभ होता क्या होते डर भरे गीत ब्रोकन हार सॉन्ग का प्रोग्राम। पहला डर भरा गीत आप सभी के लिए माइटी मुकेश तैयार हो गया है। मैं राही भटकने वाला हूँ, क्या जाने मटवाला हूँ।
1: मैं कौन हूँ,

0: नाम
1: छुपाए दिल में अजब सा गुहार बैठे है, न जाने कैसे तसाबुर में यार बैठे है। छुपाए दिल में अजब सा गुहार बैठे है, न जाने कैसे तसाबुर में यार बैठे है। मोहब्बत मुकद्दर है कोई ख्वाब नहीं, मोहब्बत मुकद्दर है कोई ख्वाब नहीं। ये वो अदा है जिसमें सब काम याद नहीं। जिन्हें पन्हा मिले उन्हें उंगलियों पे गिन लो, जिन्हें पन्हा मिले उन्हें उंगलियों पे गिन लो। जो बर्बाद हुई उन्हें कोई हिसाब नहीं।

जताना ना जताना जरूरी है, ना ही बताना जरूरी है, ना जताना जरूरी है, ना ही बताना जरूरी है, सिर्फ रिश्ते दिल से निभाना जरूरी है।

हुआ तेरे वाला दर भर गीत ब्रोकन हार्ट सॉन्ग के प्रोग्राम में एक आखिरी सॉन्ग जिंदगी के सफर में, जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकान वो फिर कहीं नहीं आते। किशोर दा के मीठी आवाज में आपकी कसम फिल्म के नाम है

सबसे ज्यादा हिट फिल्में वाले स्टार्स के लिस्ट में शाहरुख, सलमान या आमिर के नाम नहीं आती है।

चलिए बताते हैं आपको इंडस्ट्री के सबसे ज्यादा सुपरहिट फिल्मी देने वाले टॉप स्टार्स के बारे में। बॉलीवुड के ही मैन धर्मेंद्रा 80 के दशक के सुपरस्टार है। उन्होंने 300 से ज्यादा फिल्में में काम किए, जिनमें

तो 207 या 237 फिल्मों में लीड रोल में नजर आए। इनमें 93 तक फिल्मों में बॉक्स ऑफिस हिट हुए, हिट सबीट हुए। धर्मेंद्रा के बाद दोस्तों आती है वो कौन हो सकता है, मैं गीत पेश करूंगा, आपको जरूर मालूम हो जाएगा कि वो कौन है।

मिंद्रा के बाद इस लिस्ट में जितेंद्रा के नाम आता है। जितेंद्रा ने अपने कैरियर में 209 फिल्मों में काम किया, जिसमें 69 हिट रही। और जितेंद्रा के बाद दोस्तों वो कौन हो सकता है?

जसो जितेंद्रा के बाद लंबू डाडा अमिताभ, अमिताभ बच्चन आज भी फिल्मी दुनिया में एक्टिव है। एक दौर में लगातार फ्लॉप फिल्मों के चलते परेशान रहे, अमिताभ ने करीब 200 फिल्म से ज्यादा फिल्मों में काम किया। और अमिताभ के बाद दोस्तों आप जानते हैं अमिताभ का जिस 96 शस्त्र फिल्में जो हिट रही, और अमिताभ के बाद वो कौन हो सकता है,

कलाना जाने चांद सरस्वती माता दीजिए हमको अपनी आशीर्वाद। तमाम रेडियो फोन की सुनने वालों को हमारा राम राम नमस्कार प्यार भरी अदाब से श्री अकाल। जॉनी नंबर वन है हमारा नाम। आज का देश विदेश के समाचार को सुनाना है हमारा काम, यही है हमारा मोहब्बत भरी प्यार की पैगाम। दोस्तों आज है मंगलवार, फ्राइडेज दाखे 28 जुली। घड़ी की ओर देखा जाए तो 3 मिनट ओवर हाल्फ सेफर साढ़े 4 बज गया है। नॉर्मल सो एक्सेस यूर बखीर मेट में न्यूज़मैन से मार मार एक मूड एरकस ना तू तो हम बोली आप लोग को हम अपना समाचार सुना देते। अभी आप लोग राजन द्वारका से प्रोग्राम को सुना है, उससे पहले बीबी साहिबा रहीम बख से, उससे पहले आप लोग सुना है और वो है अनिल चगरूप से। तो ऐसा प्रोग्राम हमारे कुलेखा आपको बनाकर सुनाया है। अब यहाँ से आपको एक घंटा सूरीनामी का न्यूज़ और देश विदेश के समाचार को सुनाएंगे। हमारे प्यारे प्यारे जनता, हमारे प्यारे प्यारे सुनने वालों, आपको हम लेकर चलते हैं सूरीनाम की ओर और हम जानते हैं मैक आंद्रियो की ओर, जो मनोरथ के बोली से मिनिस्टर फॉर यूसीसी एंड पॉलिसी के बोले हैं, बोले बहुत बड़का फौद करी से बोले मिनिस्टर यूसीसी के और बोले है हनीस मनोरथ के बोले उज्जोन बोल ले रहा बिगिनिए में बड़का बात बोल ले रहा बोले नो दैट्स मी और बोले बोल ले रहा मुंह से नो दैट्स मी और बोले है गा नो दैट्स मी जो आउट मिनिस्टर रहा आरबेट के ऑफिस भी डायरेक्टर भी रहा बोले ओकर कारण बोले बहुत क्रिटिक पावे है और बोले एक बरिश में बोले भला कौन चीज दिखाई पाई बोले ओके कम से कम 2 बरिश चाहेगा क्रिमिनली टाइट के बारे में मां बोले ओमदा तू वोट तो निकाल दे से नो दैट्स मी चोरवन के तो बोले ओकर कारण हम जनता ओके एक सुरतु के चिढ़ावे है हनीश मनोरथ के चिढ़ावे है कि तू नो टच मी मोरो बकी देखो कितना जबर क्रिमिनली तेई दसवा में होवे है। तो ये बार बोले है स्टीफन मैक आंद्रियो आउट मिनिस्टर आरबेट के बोले है बोले इतना क्रिटिक है ओकर ऊपर सोवेल बेना और पार्लियामेंट के आदमी भी ओकर ऊपर क्रिटिक करे है बोले क्रिमिनल बोले ना अनपाक करे है बोले सेल्फ पॉलिसी में इतना क्रिमिनल है स्कैंडल एंड कॉर्प्स पॉलिसी में और बोले है अन अन अन मैक आंद्रियो मिनिस्टर रहीम तो मुद्दे क्राइकन ओम से इंतवेरकन बोले ओके चाहे एन वेरक होवे के भैया एक बरिश हुई गब तुझे ये एन वेरक करे एन वो वही तो आलमाल दीवनीर यूरिस्टिस और बोले तखलाई कर तेर बोले मनाद रख कर कि आंद्रियो बोले है कम्युनिकासी बोले बहुत बलांगा रही कर रोल हुए है और बोले मिनिस्टर हनीश मनोरथ बोले है बोले जब से भीतर गईल है मेरे बपाल ऐसा को करे रहा कि क्रिमिनल बोले हमें न टच करिए और बोले मैं आनू लांगा का निकोरो बोले रहा तो बोले है इस फन मीनिंग दी मनीर फन कॉमिजेर द मिनिस्टर नोक्सीस अख्तर फलख और बोले दिस एक देंग दैट ये पास तुरे यार में कुछ दिखाई पियो बोले एकर कारण बोले ओके क्रिएरियन बपाल स्फेर दिस मेंसन मुतन ओक वेटन व्हाट एंड हुड बपाल दिंगन गेसेग्ड मुत वर्डन। तो ये बात है हनीश मनोरथ के सब बोले भैया अब देखो भैल है का अधीन हीकल ट्विंकल सूरीनाम में भी जइयो भैया सब दुकान में जइयो सब दुकान में जइयो तो आप लोग पाई पइयो पैसा पाई सकियो चाहे जो दुकान में जइए जइए एरो आप लोग यानी कि मिल सके हैं।

यहाँ पे बतावे है अधीन बोले है, बोले चाहे जोन दुकान में जइयो चिनुआ बोले पैसा वेसल करे है और सब पैसा तुरावे है, बोले ऊंची जो अन्ना चाही बोले चित्रा चीज बोले सेंट्रल बारे भैया आदमी लोन जोन दुकानदारन है बहु मारक ओके एरो डॉलर काम है अपन सौदा इम्पोर्ट करे के भाई जइयो कीने न महंगा में पइयो ऐसे उस अपने कीन के तुरे है तुरावे है तो हम लोग के दे ना फोर्सी जो ने अश्विन अधीन है बोले अफकर करे चीजों के बारे में बोले डॉलर और कोर्स बोले चाहेगा हां तेर होए के बोले उसे अपने बपाल करे कितना उसे बेची कोच करेगा और बोले मैन खाट खोन फेर्दर एंड फिन दैट द विंकल्स अ सोर्ट फॉर कम व्यू सेइंग दैट मुझ स्टॉपन के तो तू स्टॉप कर पाइए भैया कब तू स्टॉप करिए ये तो देश में ओवरलोड एरो और डॉलर भर ले भैया कि कोई ना पूछे वाला है तब कोई ना बेची भैया तो आदमी जाएगा अपन बैंकॉक में बेचेगा बाकी सुरीनाम देश में जब देखो तो एरो तो कॉर्थ है तो डॉलर तो कॉर्थ है आदमी किन किन अपन धरे भैया जो अपन सौदा पानी चलावे जैसे अपन उस अपन दुकान और सब चलाई सके है तो यहाँ बतावे है मैन खार खून फेरदर और बतावे हैगा एनडी पेयर बोले है ही बोले इकोनॉमी से साके है बोले और चाहे एकर बारे में बोले खूब मोई से कंट्रोल करे के अधीर ए सेल फोर्स स्टैंडर इरफान ओम नेता पुलिसिया कैंटन ओक इकोनॉमी से कंट्रोल दिनस्टन फन बॉडी केमिस्ट सीन बोले जैसे स्कोटू के लगावल है बॉडी कैम बोले जो आदमी जा है बोले हैगा एक रूमी साके के जो कंट्रोल दीस जा है दुकान में बोले ओके भी चाहे बॉडी कैम्स लगावे के जो ने तू देख सके को दुकानदार वासे चूकू डाले इसे का क्योंकर सौदवा ना देखे कि महंगा में बेचे है नहीं चिनुआ कोला पिया दे और जे कंट्रोल करी बोली बड़ा ठंडा कोला हम कुछ ना देखीला तो बोले चाहे बॉडी स्कैम लगावे के जो ने आदमी बोले कि तू चूकू ना ले ले भैया बॉडी स्कैमवा ऊपरा है पाका सकवा कोई डांट दी कोई जान पइयो बॉडी स्कैमवा बूते भी है रे भैया अधी वत प्राचीनी मान जब आदमी मांगी चोरी करे तो सब कर सके है मखूत ये देंक इस नाम लग तो हमें फैलक तो हो क्वा करप्शी माँ हम लोग के देश में करप्शी भैया करप्शी इतना ज़्यादा है जैसे जमीन में से कसावा तो लगा डेले एक पेड़ तो ढेर के कसावा निकले लगे जमीन में और ओकर शोर जैसे बांस यहाँ से हुआ घुसे भैया जो उच्चीन हुए के नाम ना लेवे है उच्चीन हुए के नाम ले अब तो सरना में बहुत बकैन थे कि हुआ करप्शी जो है कॉरस पॉलिसी सीरीनाम में इसको तू और ज़्यादा लेवे भैया बहुत ज़्यादा लेवे तो लो निकल ले एंटी करप्शन विद फ्रॉड के बारे में बाकी तो न्यू टू हैप्पी खेन एन परसों किसीन के को जबरदस्त ओके बूटू आइल है और मांगे काल्पनिक वेत निकारे तो लो भैया तो तू भैया एगो बताई है इतना ढेर काल्पनिक वेत निकलियो लेकिन खाती वेल वर्क वन सेल्फ द मेंस फाइनली एंड डिजाइन ग्रोथ पुफर नाम ले दी पुलिसी अखेंट अब देखो कैसे रात के सिपाही एगो बड़का क्रिमिनल के भगा दे से भाई बड़का दृश्य क्रिमिनल कोलंबिया के भगा दे से अब पकड़ाए के दुई को बन है जब देखो तो सिपाही इन द पिक्चर आवे है दैट इज अनब्लीडिंग फ्रॉम ओंस लंच सुरीनाम मेंस दैट इज अन ज्वार ज्वार ज्वार ब्लीडिंग ऐसे बातचीत हुए है आप लोग जानो है कितना मछली मरल रहा कितना मछली मरल्ला आप लोग जानो है मसाल फिश तरफ तो सरमक्का रिफीर में अब एक मिला ही यहाँ पे बोले हैगा वो सोचे है बोले वो सोचे हुएगा बोले वही फोकस मिनिस्टर पैट्रिक ब्रुनिंग्स बोले जो तेल और खास ओली के बारे में बोले ओके फरमुदलक है कि खेमिस और साक इन एन इंटरव्यू में बताए से खेमिस है और बोले हैगा फरमुदलक फॉर और साक तरवेल द डीव नतीफा एनालिजेर द रिजल्टेट फॉर अ फिश मॉन्स्टर ऑफ 10 अगस्तस तक मुत वर्दन खजीन.
ये बात है हमारी जनता. Volgens minister Bruning stond al meteen na de waarneming de veiligheid van de bewoners langs de riviercentraal. Ortolunjano ketra kwekskoutu ke karma se kamarama se chori ho jai bhaiya. De kamarama se ja chori ho jai, container ma se chori ho jai, ghar ke piche se chori ho jai. To skoutuwe ke haat na hai bhai na bolo lo chori kari se. Maar de jab tu de aan de viswaas na hai, utna nir kweklaas ho jai hai. Or word gezegd, miskien is de kwek na namelijk gedumpt in de San Marco rivier, waar er zoveel vissen namelijk dood is. Ja, betalen, we hebben direct geadviseerd om geen water uit de rivier te gebruiken en geen vis te consumeren totdat duidelijk is wat er precies aan de hand is. De Ibar bolle he, ik er maar mee. Gezondheidszorg, bolle PHO, per Amerikaans Gezondheidsorganisatie, Bureau van Gezondheid, bolle BUG, bolle hega, omachirina, jahik haike, bolle 15 tarik juli, mego monster, geil he, Frans Guyana, bolle hua pesaman onderzoekeri macharia kaise maral he, bolle vervolgens, bolle ujaiga gespecialiseerde instituut me, Frankrijk me, hua pesaman. Pinsel ke onderzoek kariga. Bataai gaye hai. Abbe ikar onderzoek hoe bhaiya Frans Guyana me ukar baad me jayega. Frankrijk me bhi onderzoek hoega. Ki machariyan kaise maral hai. Pyare janta. अब देखो यहां का बोले फेस तुलन जाने हैं कौन ची है तो फेस भैया वो हैगा फेस सेक्रेटर स्वामी गिरधारी का बोले है फॉर आदमी दी फॉल्कंस फेस सेक्रेटर गिरधारी एक बरिस अयार खलीदन सामलेवन ऑन स्टोन पेन अंतरेनेन रखेरिंग सिमोन के बोले इन मिडल्स ओमखसलाकन इन आदम नोड बोले अब सांस ना ले पावे है बोले यही बोले रहा स्वामी गिरधारी बोले रहा फेस के और हैगा फरीनिंग फन इकोनॉमिस अन इकोनॉम फन सुरीनामे और बोले एक बड़ी सुई का बोले अब जनता बोले सांस ना ले पावे है हुएले फिन दैट इट नॉक द फ्रूक इज ओम अ डेफिनेटिव ओर्डेल द फेलन स्प्रेकंड van het gevoerde beleid volgens het boek delen. De Gerdhari ik erbari mee bole hai Jennifer Simons ke aur natuurlijk Jennifer Simons enige na hai Rusland hai ga vice president aur jitra ek aur partiyan hai jo okar sange sab mil ke kaam kare hai iedereen moet zich dit luisteren want jullie zitten allemaal in de regering. Niet alleen Jennifer Simons zitten daar. Zij is de laatste persoon. Maar iedereen verantwoordelijk om ons land namelijk beter te krijgen. Bole Simons, bole wokinki assisteem. Aislim batia. Abbe batari. Hanis manorat bole raha. No tets me. I bole wokinki assisteem. Santo kika bole raha. Bole wo sitting. Ta is hebben woord ik kego gebruik kere. Maar waar na karpawe dus toe. Was volgens hem juist de grootste belofte. Samenleven ke. O bole hege. Econoom betalen we gaan bolle afgerekend met oude bestuurspraktijken. Iban bolle Girdhari presentiële commissie bolle hega ki biete hue saal me bolle is op ingesteld bhaila aur bolle hega kritiek of van uit de samenleving Girdhari abbe bolle yaad kare hai ki president tijdens haar eerste eerste persconferentie me bole Gerdhari bole hame khu moi se bole hame yaad hai bole hame yaad hai eerste persconferentie me Gerdhari bole hai bole Simons bole raha bole hega bole elke commissie wordt gezien als een uitholing van de ministeries stelde hij bole ook het opheffen van deskundigen gaat volgens Gerdhari terwijl was beloofd dat met alle Surinamers bole hega
met alle Surinamers. Bolle gaan ze het land namelijk goed besturen. Hij wees daarbij de hoogste staatsschuld en de toegenomen begrotingstekort. Janta. Dan wil ik het harike baanke, feske baan mee. Vrienden van de economen. Ik er baan mee. Eise bolle he. Ka bolle he ga. Oké. Een adem nood bolle se. Surinamers ke. जनता और हम आगे जाइला एगो फरमोर द चिनुआ भैया फरमोर द शिनेस के बारे में है तो बोलिए सलाम के बात है जोनी ना ना ना ना इस सलाम के बात ना ही और कुछ बात है एगो फरमोर द चिनुआ भैया रेज द श्रीलंका बेनन में सुरीनाम से पासपोर्ट आए एगो चिनुआ मराई गए है और सरनाम के पासपोर्ट लेके उस श्रीलंका भर में घूमत रहा यहाँ बतावे भैया शिनेज स्टार बेरखर दी श्रीलंका वर्थ ऑन फूड ओके सबर ऑन फूड कर ले रहा बोले हैगा इन हेड लैंड बेनन हुकूमत और है सरनाम के पासपोर्ट से Het slachtoffer geïndividualiseerd al H.O. Zong. Obole Ussat Tarik April met Cambodja met Aila. Sri Lanka ke nieuws ik erbare me bole he. Bole Colombo batawe he. Colombo ke nieuws ik erbare me batawe he. Bolle hega song reizen samen met een groep personen naar Sri Lanka. Het is bekend hoe hij aan het Surinaamse paspoort kwam. Maar ja, hem biedt hoe die noem betaalde. $2,000 bario te pai jayo. Likala nieuws me bhai hem na hasila. Maar dat heb ik gezegd. Ki verblijf vergunning mangye. $2,000 verblijf vergunning pai jayo in Suriname. Zo makkelijk gaat het bhaiya. En dat gaat met corruptie te hoa bhaiya. कौन तो बॉडी स्कैम लगाइयो भैया अधीन उन्दर तफरा सब चीज चले है उन्दर सुकर उन देखते उन खबरों के ग्रोत गेल बदरागन ऑफ द बैंक रीक एंड मेट हे स्लाखतोफन इन फरमांत वर gebracht द पुलिसी vermoedt dat een conflict over de geld mogelijk heeft geleid tot zijn ontvoering de i ओ ऑनफूरिंग भले के बहुत ढेर पैसा बैंक में रहा और कहां से आयल है ओके सेवन ऑनफूर कर ले से भैया बोले हैगा ये रे मेरा नाम रहा सॉन्ग ना गाना वाला का नाम रहा सो ब्लेक एंड द सॉन्ग एन बलंगरिक रोल फुलफिल बिनन एन गोऑर्गेनाइजेड साइबर क्रिमिनलिटेट ग्रुप criminele groep, sorry mensen. Zijn chauffeur, een kok en vriendin zijn door de Colombo zijn politie in bewaring genomen en worden verhoord voor het onderzoek. Zijn 5 speciale politieteams ingezet. Toe Ebate Rondui Baje verscheen een tweede groep van ongeveer 20 go Chinoa staatsburgers Aile om maken 10 go admike pas pistool la bedreig krise mishandel krise ik heb baan geleken Chinoa on voorke liggen he bole 2 go slachtoffer werden later vastgebonden handen en voeten achtergelaten in een busje in Port City Song werd naar de onbekende locatie gebracht zijn lichaam werd enkele uren later aangetroffen in Karadana in het gebied van Ihilya Godame. De dusto Sri Lanka me is op rahan te chinoo ke onfur kare raha jaise yahan bataye gaye hai. Hamare pyare pyare ego taxi chauffeur bhaiya Albina ke baat hue hai. Aisan duidelijkheid over de controle over de passagiers en goes ke bare me bolo mange duidelijkheid passagiers ke controle ke bare me en over vlees taxichauffeur ko bhaiya di de route tussen Paramaribo Almina onder hou kre hai spreken over de politie controle bij de stalkers even van controle hai hai aur bole hai ga de politie hen dreig kre hai aan te houden wanneer herhaaldelijk passagiers zonder geldige verblijfdocumenten in het voertuig worden aangetroffen Ook bestaat onduidelijkheid over de hoeveelheid vleeswaren die zij mogen vervoeren. Toen Adamien taxi en chalawe hegaan Paramaribo en Almina is op geskoto stalker ijver gebole he. Bole toor, auto me bole hampabe
इलीगाल के जेके कागज ना और गोस उस पावे ओकर बारे में बोले दैलक करी से बोले तो के हम पकड़ब तब तो शफीर बोले है हिन ऑन खनुखन ओवर द सिचुएशन बोले द फॉल्कंस हैड ऑनगोइंग एन वीक बोले ची यू हुए है बोले कभी ना बोले सब हम लोग के बोले ओम द फरब्लाई फॉर क्यूनिंग सबके पशाशीर के मांगत रहा बोले शफीर फिर ने दस फ्रन रोलिंग से फॉर फॉर फूड फॉर पशाशीर एंड द पुलिस द डॉक्यूमेंट कंट्रोल में तो आई अब शफीर वन थरो जाएगा टैक्सी जो कोई लेकिन बोले तो के फॉर क्यूनिंग भैया तब हमारा तुम बैठ पाइए सिपाही के काम है तब तो शफीर वन के कहे तू जा है वो बेचारा ना पर ब्रेड कमा है पर रोटी कमा है जो कोई के पाई फॉर फूर कर को ले जाए और जो वेली खाल है तो सिपाही काम में पकड़ के एक मारे में बोले है एगो फ्रैंकलिन बोले है बोले 35 बरिस से हम टैक्सी चलाई ला रोन अब बोले चीज कभी ना भैले बोले अब एक हफ्ता हुए ये सब चीजों हुए है कि सब हम मांगे हैगा शफ ओकर काल पशाशी सुन के काबल फरब्राई फॉर क्यूनिंग और हम लोग के बदराई करे हैं फ्रैंकलिन फेंदे से बना दे रही अंतरे फॉल्कस हेम इज अ कंट्रोल पोस्ट एर यूज ऑन द डॉक्यूमेंटर फॉर पशाशी टू कंट्रोल एरन वनेर है ऑन कंट्रोल ब्लैक दैट बस केरी फॉर पशाशी नीड इन ऑर्डर सेन मुद पॉलिसी फॉल्कस हेम बपालन ऑफ से दी पर्सन फर्दर मग रेजन ऑफ इट फुरतेक मुड फरलातन तो ये बात तो ये सही बात बोली से फ्रैंकलिन तो यहाँ पे भी बतावे हैं शोफेयर स्टेल इंडिया प्लोसली ओक फ्लेस वारन वार्डन ऑन द स्केप टर्वेल हीर ओवर हीन दैलक रीकल्स में थे सेन कम्युनिसेयर बोले बस में सब हनके बोले कैपेसिटी है 15 आदमी के और बोले उस सब ले जाए जेमा और हेल 200 मुर्गी के बहुतू रहे बताई कर दर 15,000 रहे बोले खाइए दीदान On the scapen, er is geen richtlijn in mensen. Suriname kebaat hoe we maar janta albina ke. हमारी जनता हम और आगे को अपना प्रोग्राम को लेकर चलते अब देखो भैया गयाना तो लोग जानो गयाना मेरे को फेयर बोट बुड़ल हाँ और ये फेयर बोट बुड़ल कितना जनता मर गए वहाँ पे कितना आदमी मर गए हैं अब एक बारे में हुआ पार्लियामेंट में भैया ओपोजिशन लेखनी से पार्लियामेंट स्टिल ना फेयर बोट रामप भाए ओपोजिशन हुआ पे पार्लियामेंट में हंगामा मचा दीजिएगा सोमवार के और ओपोजिशन पार्लियामेंट के सेटिंग फॉर नेशनल असेंबली में जोन बोटिया के नाम एमवी बरीमा जोन बोडल ओकर बारे में उपवार वर्क के बोले हैं मिनिस्टर के ऑफ फॉर अफगान ऑन द फरकादरी हिल्डन ओपोजिशन पार्लियामेंटारी सामन में अंदरन ओपोजिशन लीडर अन प्रोटेस्ट मैनिफेस्टेशन बैठन है पार्लियामेंट का बाउ में स्पंदुकन एंड लुइसन रिपन ऑफ Tot gerechtigheid van de slachtoffer en hun nabestaanden en eisen zij hen vertrek van de bewindslieden die volgens hen verantwoordelijk zijn voor tekortschieten toezicht op het veerdienst. Bout lamba chowna likhale dosto. लेकिन जोन बोटिया चलावत रहा वो सब गांजा पी के चलावत रहा बीते हुए दिनों में आपके हम बताए रही कि चीज आ कैसे ओली प्रेसन दालन एफमेंट से हम तो ना देखे ला दाल भैले यहाँ लिखल ओली प्रेसन दालन दुर पौस इन अमेरिका से अनफालन ऑफ ईरान भाई हम तो सोची एकदम से पौस है पौस भैया चाय पिए कॉफी पिए से बन जा भाई और बोले तो ओली प्रेसन से मार के बोले दाल भैले हालात में ना भैया यहाँ पे उछने हैं बोले अमेरिका ईरान के लड़िया तरी से पौसेर भइल है स्टॉक थे फ्यूरन हुए हैं बोले ए न्यू स्प्रेकर ओवर हेयर ओपनिंग फॉर स्ट्रार फॉर हॉर्मूज ही फर्स्टरक बोले ना 13 दागन अनफॉलन ऑफ Iran hield Washington in het weekend de wapens stil. Amerikaanse VN-gezant verklaarde dat de VS de diplomatie wat ruimte wil geven onder handelkrikke. Teheran met bij jouw hoofdstad in Iran kondigde op zijn beurt aan dat hij zijn vergeldingsactie tegen regionale buren zouden stopzetten. Wat de scheepvaart in de golf en de olieindustrie enige verlichting biedt. Aangezien onze strategie voornamelijk vergeldingsgericht was, hebben we ons Onze vergeldingsoperatie ook gestaakt, zei Mohammed Akraminia, woordvoerder van het Iraanse leger. Bij je en ze ben kerdo, kaad je pauzeer kere. Toen bole Amerikaanse leger bole tera rood ke raad khub maris bomadeer ka dali se bhaiya. Ka bole hai ga in Iran ke, aur Iran bhi ka bole hai ga. ई सबके जहाँ जहाँ ई सबके बासस रहा हुआ पे उस बम्बा देर करी से और बतावे दे से पौ से खाफ दब डिप्लोमेटिक इंस्पानिंग तेज वाशिंगटन तेहरान न्यू कंसर्न हुए कॉन्फ्लिक्ट से आइट ब्राइड
voorbij de Irans gesteunde Houthi-rebellen in Jemen vielen Saudische schepen aan in de Bab al-Mahdab-straat, een belangrijke toegang tot de Rode Zee. Toe betaai bija til meise saudala ek botel en ek baril aur mahanga hui gehe, waarbij Brent vorige week voor het eerst sinds mei weer boven de $100 hui gehe per vat. Nieuws dat de scheepvaartverkeer in Rode Zee doorging. Auro, ye baat hai hamare pyare sunne walo, aap log ko hum ek geet suna dete hai, to abhi hum wapas aa jayenge.

जरल है, बांती आंती धर के जराई से मिली हुई फिर फेलिंग ना देखे सबन भैया। तो यहाँ फिल्म पर दिखावे कि सबन 1800 किलो जराई से का कोकीन आदमी सोशल मीडिया पर हंसाई हंसे हमारे सिपाही लोग के श्री नाम के बोले अब तो बड़े टू बोले वहाँ पे सरना में महंगा हो जाए वहाँ पोको का इनवा के जगहिया पे कोका इनवा के जगहिया बोले पिसान ना जराए हुई है। तो ये बात है हमारी जनता जो आप लोग को हम बता देते हैं। मोनिटोरिंग विद ऑन द हाउस सोने एनर्जी सिस्टम इन बेनेलन फॉर ड्यूर जामन सोना परेल तो लोग जानो नीदरलैंड में सबके है पहना सनाम के बिना लांत में भी समन के लग गए। अब मांगे हैं सब मिनिस्ट्री फन हिलप से ब्रोनो बोले है स्ट्रिक्सटेन मोनिटोर करेगा ऑन द हाउट करे के सोना एनर्जी सिस्टम में बिना लांत में जो ने मिलो के हुआ स्ट्रोम दो रो रहे वेल सोना एनर्जी ऑफ द लॉन्ग टर्म एंड फॉर डील हर इज ब्लेफन इन्वेस्टिंग कॉस्ट ऑन फोकस हार हुक और बोले द आनलाइनिंग फन सिस्टम इन वर्ल्ड मोमेंटी गफिनाशिट एट द स्टार्स बकरूटिंग ऑफ या द लीनिंग एंड हा अंडरसुक नॉक द टोटल कॉस्टन। तो ये सब सोना पनील फोरकर खेरिंग लगाया रहा बहुत ढेर बेनेलांत में भैया। और अब चाहे सबके अंदर हाउट करे के तब बोले है सिमोंस बोले है बोले बहुत ढेर पैसा लेवे है लगेगा अंदर हाउट के माँ भैया वही तो बात है वो तो किलो ले बाटे महंगा बाकी तेलवा भरे के भी चाहिए तो तेलवा भी चाहिए भरे के तो वन ऑनर हाउट ना करिए चीजों कीने के महान थोड़ो है ये मुत ओग द ऑनर हाउट खानदून गो बेबी के भैया लेक फ्रांस पुलिसी ही मंगलवार के 5 बेबी मरल है दो बेबीज का फोन देखो घर में और रहेगा और आइए में बोले सैडन फन फ्रंक लेक में 5 बेबी के लेक मिलल है भाई तो वही देर तक यार के गो आदमी सो मार के ना दत है ऑन इन खेत हाथ का क्रीखन में सेन फ्रो अन ऑन बिंदन ने लिखाम इन कार्टोनन दोजन दत मेल द फ्रांस क्रांत सेन एफन oude vrouw, zijn even oude vrouw was op dat moment niet thuis. Zij was met buikpijn naar het ziekenhuis gegaan en ze beviel daar een gezonde baby. De hoangelige baby beval kreeg en hier aan de miakakarische vrouw leed aan zwangerschap ontkenning. Dat is een fenomeen waarbij vrouw niet doorheeft dat ze zwanger is. Het lichaam vertoont dat nauwelijks symptomen van een zwangerschap. En wil ik een keer ouder naar Jan Park hem zwanger wat hij. Ja, het spataal met de baby hoe ja hij. Wil ik naar de ontdekking is de man met de stoffelijke resten naar het ziekenhuis gegaan. Het ziekenhuispersoneel waarschuwde vervolgens de politie die kort daar op de woning van het stel doorzag. Daarvoor vonden zijn de overige stoffelijke resten. Toen bij die doekje baat hebben. Ja, de vrouw ligt nog in het ziekenhuis en is nog niet ondervraagd. Haar partner is verhoord, maar niet aangehouden. Hij verklaarde niets te weten van de mogelijke zwangerschap van zijn vrouw. Het OM is een onderzoek gestart, mensen. तो ये बात है सेलेंस्की गए ले भैया अमेरिका में और साथ वो भी गए ले नेतान्याहू भी गए ले यूक्रेन के प्रेसिडेंट सेलेंस्की गए ले वे तो है इसमें डोनाल्ड ट्रंप लगे इस तो बुशुक है ना अमेरिकन से प्रेसिडेंट वोनिंग में गए ले भैया सेलेंस्की बोले हैगा बोले हमें अमेरिकन से मिलिटेर स्टेन खत्म है ले लीव रे फॉर इधर तू कर सकता अमेरिकन से मिलिटेर स्टेन अब से बोले हैगा बोले हमें टूसेकिंग डे ऑफ द नाफो टॉप दैट ओक्रेन लाइसेंसी सो क्रेगन ऑन सेल्फ फॉर योर रॉकेटन टू प्रोड्यूसरन और सेलेंस्की इज नॉट वाशिंगटन गवर्नमेंट और वहां पे एगो अमेरिकन से सेनेटर हैगा लिंसी ग्राहम इन से फॉर द केयर के फोकस में मेंशन आउट इट होक से उमरल है तो बोले कि हमें बहुत बोले रहा कि कैसे हमें चाहिए रुसलान में ओरलोख करे सिखाए रहा बोलो कर मटिया भी एली बाटी और बोले द ट्वी ऑन मुत एलका नो हम voor Graham's overleden in Kiev. Ook de Israëlse premier Benjamin Netanyahu in Washington voor de uitvaart van Graham. The Times of Israel schrijft dat Netanyahu en Zelensky elkaar mogelijk in de marge van de bijeenkomst zouden willen spreken mensen. Toen ja, nou, hey, Oekraïne, Iran, kego telke boot daag deze bhaiya ap Iran, bahut babulla hai. Iran bole, batla chukaiga Oekraïne se.
और उक्रेन बोले रूसलान से माल जात रहा, बोले उक्रेन के माल जात रहा कि अरे मतलब कि ईरान जात रहा, बोले ओहिक मारे बोटिया।

दोस्तों इसी गीत से एक दो समाचार हम आप लोग को और सुनाएंगे, तो हमारा समाचार आज के खत्म आने को हुआ है। तो देखा जाए भैया, हम मस्कर द ओवर फारस लान टू बाय सुपरमार्केट क्रीफल एन में सांदल भैया सूरी नाम की ओर हम जाएला। मास्कर पहिर के गैले ओफर फालस स्क्योतिंग कूद के एगो पेरसील के स्क्योतिंग कूद के चाय के दुकान में घुटन ले मेट वापस फिर वापन एगो इन सस्तक यार के बाउनर्स के और दैट मोमेंट ओके ओफर फाल करी से ओकर प्रसिये में भैया वो काम कर रहा है वेर दोनों ओफर फालर ओफर मिस्टर और बोले नार द स्लाब कामर खबरा वार से हंदन एंड फूतन नेचुरल क्लीनिंग सर्जन का बांधी से भैया एगो 21-jarige KH die zich in de woning bevond, werd eveneens ook onder schot gehouden. Ook pakkelijke baan is van ja, al liggen ambulancebioken liggen bij. Al terwijl de slachtoffer gekneveld waren, doorzochten de daders zowel de woning als de supermarkt. Daarbij haalden ze alles overhoop. Criminelen gingen er vandoor met onbekende geldbedrag. Dollars, Amerikaan dollars, Surinaamse dollars liggen. Al ze bhagge higa. Na de overval lieten de daders slachtoffer gekneveld achter en vluchten. En zij een geriestande auto te noteren me. Ja, no to bole noteren me. Hem apa bhaiya manohrat ke bole la bole criminal saka bhail hai. Na khali ehi bahu dheed hai. Hiya pa dekho brom fees leke gail hai. Ga digo criminal 100,000 SRD. Lachman strat me bhaiya ego slaitarai me ghusal hai. और होंडा डाइसन लेके चल गए हैं जगन्नाथ लक्ष्मण स्त्रात में, जो पहले कॉपर नाम स्त्रात रहा 4:30 सवेरे के बाद है और जो सवेरे गए सौंदा के मेरा के तो देखे वो दुकान फुकान सब तुरल है। तो ये बात है हमारी जनता 6 स्टूडेंट सुरीनाम वाला वो सब सीधेर करता क्यूबा में दतरा के डिप्लोमा पाई गई है दोस्तों। से सुरीनाम से स्टूडेंट बहाल आर्टन डिप्लोमा ऑफ क्यूबा में से, तो बहुत बहुत बधाई है आप सबके। तो यहाँ सबके नाम निकल न्यू आर्टन से अलान दिल रोहुली टर्न हॉरफ साफिला विलम शर्मा कास्टेल काजल खुनखुन एंड अभिगाइल हिंजन। De groep bestaat uit 4 vrouwen en 2 mannen. Volgende gedurende 7 jaar de medische opleiding hebben gevolgd in Cuba. Wat hij hoor. तो हमारे सुरनाम के लोग समाचार सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम नमस्कार और प्यार भरे राम। जॉनी नंबर 1 है हमारा नाम।

और बनवारी लाल मूवी का नाम ही मेरे यारो। और आज आपको हम कुछ पुराने गीतों की बाहर सॉन्ग सुनाएंगे हम। और अगले गीत के ओर जाते हैं और वो क्या है शमी कपूर आज बनवा श्री मोहम्मद रफी का गया हुआ ये सॉन्ग है।

0: और एक प्यारी का नगमा है और मजों की और कहानी है। फलंतैन यानी कि लवली सॉन्ग हम चलाते हैं।
1: झूठा ही सही
0: और झूठा ही सही
1: के लिए कोई हमें प्यार कर ले। झूठा ही
0: सच्चे कहना।

और दोस्तों आपको हम और वैलेंटाइन के कुछ और कुछ प्यार भरी गीत से आज आप लोग को हम सेवा करते के ओनली फॉर द लवर वैलेंटाइन सॉन्ग।

0: Meer informatie www.minnesummerfestival.nl.
1: दोस्तों लवली सॉन्ग बजाना हमारा काम है, हमारा काम है लवली सॉन्ग बजाना।

बलमा बलमा अगर जिंदगी हो तेरी, रोमांटिक जोंग रोमांटिक जोंग के मूड में है। मूवी के नाम है झनकान फन नई खतक और बलमा नई खतरी खतक का आशा भोसले का जोंग के बाद हम चलते हैं दिल लगी ना किया करो, दिल लगी ना किया करो।

0: क्या करो एवरी ग्रीन एवरी ग्रीन। और दोस्तों सॉन्ग लवली सॉन्ग, और हम चलते हैं अगला गीत की ओर। और अगला गीत क्या होगा सुना जाए।
1: नहीं देखा कभी पहले,
0: और हम ही नहीं देखा

0: और तेरा नाम में बसी है खुदा दोस्तों दोस्तों दोस्तों
1: People around the globe, this one's for you.
2: Here we go.
0: और कुछ फिजी सॉन्ग आज को लोकल फिजी सॉन्ग सुनाएंगे

दोस्तों और दोस्तों, फिजी का ये जो है जो आपको हम आज सुनाते हैं।

मेरा रंगला और राम की सुन कविता, राम की सुन का ये गाया हुआ ये सॉन्ग है यारो। हम चलते हैं अगला गीत की ओर, वो क्या होगा, देवी निहा सरस्वत राधे व्रजा, और क्या क्या नाम है इसमें दोस्तों, आओ सुना जाए ये क्या सुनाते हैं।

और बुधराम होलास से दोस्तों, और थार गोरी और क्या क्या गाए हैं, ये एक चटनी जोंग है दोस्तों, चटनी जोंग। तो आज कुछ चटनी हम आप लोग को सुनाएंगे, आओ एक और सुना जाए, हरी सो सुखदियो के ड्रिंकिंग वाइड बाड़, और एक सो का चटनी है दोस्तों।

0: और ड्रिंकिंग टू बार दोस्तों, कुछ सुखान चटनी आप लोग को हम सुनाते हैं और सुनाते ही रहेंगे। तो दोस्तों हम चलते हैं केनेथ सालिक की ओर, ये भी एक सुखान चटनी आप लोग को सुनाएंगे।
1: ना ना।

और हम तेरे शहर में आई है, और हम तेरे शहर में जो आई है तो एक मुसाफिर की तरह तेरे शहर में हम आई है। और ये गजल आज हम चलाते हैं और वो है यूसुफ मालिक कवाल का। यूसुफ मालिक कवाल का ये गजल जो आप लोग को हम आज सुनाएंगे दोस्तों। और हम चलते हैं, खूबसूरत है ये आंखें तेरी तलत अजीज का, ये एक गजल है जो आप सबके लिए हम चलाते हैं। और वो है खूबसूरत है आंखें तेरी, और इस गीत को इस गजल को गाया है और वो है तलत अजीज ने।

और खूबसूरत है, खूबसूरत है आंखें तेरी, और रात को जागना छोड़ दे। अगर आपकी आंखें इतनी खूबसूरत है तो सोना तो चाहिए ना, क्यों रात भर जागते हैं लोग। और आदमी जो रात भर

उसको कई कारण होता है। कभी कभी रात को जागना उसको कहते हैं कि उसको नींद नहीं आते है, और जब नींद नहीं आते है तो कहते हैं कि मूड पे कुछ है भैया। तो बोले नकाइनी स्लाप मेंस, तो बोले हैगा दी इस नाम लेकिन हेफ्टी प्रॉब्लम, और जब प्रॉब्लम है या प्यार के दर्द है या कुछ है तो रात के नींद कहाँ से आई भाई। तो ये गीत को गाया है खूबसूरत है आंखें तेरी, और ये तलत अजीज ने गाया है। और हम चलते हैं और गजल के ओर, है जिंदगी कितना खूबसूरत है, ये जिंदगी कितना खूबसूरत है, वॉइस ऑफ ओस्मान मीर का ये गीत है जो आपको हम यहां से सुनाते हैं।

और है जिंदगी कितनी खूबसूरत कि जीने की कुछ पता ही नहीं है दोस्तों। और ये है खूबसूरत फेमस गजल बाय उस्मान मीर का ये गाया हुआ और गजल सॉन्ग है। और इस गीत को लिखा है सहबीना अदीब। उसके बाद हम चलते एक ब्यूटीफुल गजल की ओर और ये है पंकज उदास का गाया हुआ ये सॉन्ग है दुख सुख था एक सबका। दुख सुख जो है तो सबका है दोस्तों, आओ सुना जाए। और ये है पंकज उदास का गाया हुआ ये गजल।

दुख सुख का एक सभा और सबका है, कभी एक जमाना था इस गीत को गाया है, और वो है पंकज उदास ने इस गजल को आप सबको लिए बहुत प्यार से गाया है। एक ब्यूटीफुल गजल दुख सुख का, दुख सुख का और एक सबका है। उसके बाद तो हम जाते हैं एक और गजल के ओर हम बढ़ते हैं और पंकज उदास के और हम जाते हैं। जॉनी नंबर वन है और आज आप लोग को हम गजल से सेवा करते हैं। एक तरफ उसका घर है और एक तरफ मैखाना, आए गमे जिंदगी और सफर गोरखपुरी का ये सॉन्ग है, एल्बम नशा 1999 का है। दोस्तों आओ मिलकर सुना जाए।

और एक तरफ उसका घर और एक तरफ मई कदा। और ये गीत को गाया है पंकज उदास ने, इस गजल को बहुत अच्छा से गाया। हम चलते हैं, पत्थर बना दिया है और उसने बनाया है पत्थर, पत्थर को बनाया है अनूप जलोता ने, उसको एक गजल जो आपको हम जरूर सुनाएंगे।

बना दिया है। आज हम आप लोग को कुछ गजल सुनाएंगे दोस्तों, और गजल में कुछ मजा और है। हमारी प्यारी प्यारी सुनने वालों, गजल का मजा और कुछ है। तो हम सोचते हैं

और मेरा दिल ये और क्या होता है मेरे दिल को पुकारे आजा, मेरा दिल ये पुकारे आजा। लता जी और तलत महमूद का ये जोन थे। दोस्तों हम चलते हैं और आगे को अपना प्रोग्राम को लेकर, और वो है अल्लाह जाने क्या होगा आगे। मनोज कुमार हरियाली और रास्ता का ये जोंग है, हमारे यारों हरियाली रास्ता का ये जोंग है।

और अल्लाह तो सबको जानते हैं कि इश्त में क्या क्या हो जाते हैं। तो दोस्तों इश्त में बहुत कुछ हो जाते हैं। तो हम चलते हैं इसके बाद में, हम चलते हैं मुझसे इतना प्यार मत करो लता जी तलत महमूद का ये सॉन्ग है। मुझे इतना ज्यादा प्यार मत करो कि मुझे अपने आप पे गर्व हो जाए।

और इतना न मुझसे तू प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल एक मैं हूँ जो बादल आवारा जो यहाँ से वहां तक। और वो चलते हैं तदलत महमूद का और नाइटिगेल वताजी का जोंग थे आशा परीक सुनील लतीफ ने काम किए। उसके बाद में हम चलते हैं दोस्तों और वो है नाइटिगेल लता मंगेशकर और को किशोर कुमार का ये सॉन्ग है लिखा है तेरी आंखों में और आपकी आंखों में क्या है आपकी आंखों में क्या है ओ तो आपको पता है कि किसके सपने

और दोस्तों लिखा है तेरी आंखों में और आपकी आंखों में क्या लिखा है आपको तो पता है। साथ ही साथ चल रही कि पन्ना की तमन्ना में नाइटिंगेल लता जी किशोर दादा का ये सॉन्ग है। देवानंद सिंह ने तमन ने इस फिल्म में काम किया, इस मूवी में क्या, और पूछा है कि तुम्हारे तमन्ना क्या है, पन्ना ने पूछ रहा है।

और मिल जाता है, हीरा मिल जाता है। नैतिकी लता जी का ये जोन थे। उसके बाद प्रेम चलते है मौफी के नाम असली नकली निकति होने द्रियन शस्तक का, जिसमें देवानंद ने काम किया है। हमारे दोस्तों मौफी के नाम है असली नकली का एक सॉन्ग है परमात्मा श्री मोहम्मद रफी, और नैतिकी लता जी का सॉन्ग है जिसमें शंकर जयस्कन का म्यूजिक पे इसे काम किया है हसर जयपुरी के साथ में। तो हम चलते हैं मूवी का नाम है असली और नकली।

से बांध लिया है मूवी के नाम थे। असली नकली के बाद में हम जाते हैं और मधुबाला की ओर परमाशीर मोहम्मद रफी और आशा जी का सॉन्ग है अच्छा ये मैं हारी काला पानी जोंग मूवी का नाम है।

और अच्छा ये मैं हारी चलो काला पानी का ये सॉन्ग है दोस्तों। ओल्ड एंड गोल्ड का प्रोग्राम आज हम चलाते हैं और ओल्ड एंड गोल्ड के बांध में अगला सॉन्ग की ओर हम जाते हैं। प्यार ही प्यार देखा है तेरी आंखों में बस प्यार ही प्यार, पद्माश्री मोहम्मद रफी का ये सॉन्ग है, मूवी के नाम है प्यार।

प्यार ही प्यार मौफी का नाम है हमारे दोस्तों। और हाल कैसा है आपका, ये हम नहीं पूछते हैं, किशोर दादा ने पूछ रहा है। मधुबाला मौफी का ये सॉन्ग है, चलती का नाम है गाड़ी।

और हाल कैसा है आपकी आप बता दीजिए, मुझे इतना प्यार है और किससे ये आप भी मुझसे बताइए।

और दोस्तों जैसे हमने आपको कहा है कि आज हम आप कुछ सॉन्ग सुनाएंगे, मोहम्मद अजीज का सॉन्ग और एक बगल उसके बाद, और वो है टाइगर ऑफ इंडिया कुमार शानू और अलका यांगनिक का सॉन्ग हम आपको सुनाएंगे।

और कोई तलाश है जिंदगी तो कोई साथी चाहिए। अब हम चलते हैं कुमार शानू के बांट में एक बार फिर मोहम्मद अजीज की ओर।

तो मोहम्मद अजीज ने कहा कि ये गम ना होता तो वो शराब कभी नहीं पीता। तो उसके बाद हम चलते हैं टाइगर ऑफ इंडिया कुमार शानू एंड अलका याग्निक।

और दोस्तों अनुराधा पौडवाल और मोहम्मद अजीज का ये सॉन्ग थे। उसके बाद हम चलते हैं एक बार और आका यागनी कुमार शानू की ओर और हमारे यारो तो हम चलते हैं एवरीग्रीन कुमार शानू एंड अलका यागनी।

और बरसात में भी आग लग जाती है दोस्तों, तो ये सब तो प्यार की बातें होती है यार। तख्त में जो सदाबहार जोंग है और वो है कुमार शानू अलका यांगनी का एक गीत आपको हम सुनाते हैं। और दिलबर के बाद में हम क्या आते हैं,

फन हम हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यूं ही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेट होने के लिए तार कीजिए 9 7 3 5 6 7 20 तक 7 8। फाहून हिंदुस्तानी रेडियो।

एक गीत अब की बरिज फिल्म क्रांति जो थे एक जमाना में एक समय पे सूरीनाम देश में और ये बहुत पॉपुलर फिल्म थी दोस्तों, आपको जरूर हम बताते हैं। और इस फिल्म क्रांति जो है इस गीत को आप लोग जरूर जानते होंगे, लेकिन आज हम फिर आप लोग को सुनाते हैं।

ये सॉन्ग है हमारे दोस्तों जो आप लोग को हमने सुना दिया है। गदर एक मूवी था जो लोग को बहुत पसंद थे और गदर तू भी आ गया है, लेकिन ये सॉन्ग जो है वो है गदर एन का सॉन्ग है।

एन रिम झिम से गीत सावने गाए और राजेंद्र कुमार बबीता का कुछ हम आप सॉन्ग सुनाएंगे जिस फिल्म में काम किए हैं, आप एक और सुना जाए।

नहीं तो मानता नहीं है दोस्तों, और ये एक दिल है तो वो क्यों मानेंगे। जब किसी से प्यार हो जाता है तो वो मांगते हैं देखने को, सुनने को, देखने को, चाहने को, छूने को। ये दिल ऐसे ही है दोस्तों।

फनहंट हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेट होने के लिए तार कीजिए 9 7 3 5 6 7 2 तक 7 8। फाहून हिंदुस्तानी रेडियो।

और यहां से हम अपना कुछ प्यारे प्यारा प्यारे प्यारे लवली सॉन्ग भी आप लोग को हम सुनाएंगे। और कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों, कहते हैं तू हजार बार भी रोते तो मना लूंगा तुझे, तू हजार बार भी रोते तो मना लूंगा तुझे, मगर देख मोहब्बत में शामिल कोई दूसरा ना हो। जब अगर मोहब्बत में कोई और आ जाएंगे तो कैसे मनाऊंगा। और कहते हैं कि किस्मत या मेरी इम्तिहान ले रही है, किस्मत या मेरी इम्तिहान ले रही है, तड़प कर तू मुझे दर्द दे रही है, दिल से कभी भी मैंने उसे दूर नहीं किया, फिर क्यों बेवफा का वो इम्तिहान, वो इंतजाम रह रही है। एक बार फिर दोस्तों, किस्मत या मेरी इम्तिहान ले रही है, तड़प कर या मुझे दर्द दे रही है, दिल से कभी भी मैंने उसे दूर नहीं किया, फिर क्यों बेवफा का वो इल्जाम दे रही है। दोस्तों हम चलते गीत की ओर कि बोल मेरे तकदीर में क्या है और मेरे हम सफर अब तो बता। और इस गीत को आओ मिलकर सुना जाए, प्यार भरी गीतों के बहार प्रोग्राम हम लेकर चलते हैं। मैथिली मुकेश नाइटिंगेल के लता जी इस गीत को गाया है, आओ सुना जाए।

मेरी तकदीर में क्या है और मेरी हम सफर अब तो बता। और फिल्म के नाम है हरियाली और रास्ता। दोस्तों जॉनी नंबर वन है, आप लोग को हम बता देते हैं कि हमारा प्रोग्राम जो है हर शुक्रवार को शाम को 6 से और रात्रि के 9 बजे तक चलते हैं, मंगलवार को दिन में 5 से 6 बजे लेक सुरिनामी न्यूज, और रविवार की सोमवार को दिन में 1 बजे हमारा सुरिनामी न्यूज दोस्तों। और आपको हम बता देते हैं कि लोग जो इसको मालूम नहीं है, हमारा फ्रीक्वेंसी जो है हम सब AM पे अब नहीं है दोस्तों। दिस मीन्स दी डेंक ए हमारा रेडियो कुछ पहले नहीं मीन्स आज से अंदेया बी प्लस रेडियो है दम पास क्वेंसी ऑन लॉइस्टर ऑफ अलेन ऑफ द इंटरनेट। और हमारा फ्रीक्वेंसी है 195.93 मेगाहर्ट्ज़ पर, और नहीं कनाल 8A डीएबी प्लस रेडियो पर हमारा प्रोग्राम रेडियो फाहून के प्रोग्राम आप सुन सकते हैं, अपने गाड़ी में भी सुन सकते हैं दोस्तों। और हम कहते हैं यहाँ पर कि कहते हैं मरे तो लाखों होगे तुझ पर, मरे तो लाखों होगे तुझ पर, मैं तो तेरे साथ जीना चाहता हूं दोस्तों। मुझ पे पाने को मुझे पाने के तुम जिद ना करो, मुझे पाने का तुम जिद ना करो, किसी को चोरी हुई मोहब्बत हूँ मैं किसी की चोरी हुई मोहब्बत हूँ मैं दोस्तों। और यहाँ से हमारा प्यार भरी गीतों का और बहार नामक प्रोग्राम हम चलाते हैं लाइव रेडियो फाहुन के माध्यम से हमारे प्यारे प्यारे दोस्तों। और हम चलते हैं फिल्म ब्लैकमेल के ओर, हम चलते हैं पल पल दिल कोई पांच किशोर साहेब ने इस गीत को गाया है, आओ मिलकर सुना जाए।

पल दिल के पास सिर्फ तुम ही रहती हो। किशोर साहब ने इस गीत को सुनाया है, फिल्म का नाम है ब्लैकमेल। और दोस्तों कहते हैं जिंदगी के कुछ लम्हे, जिंदगी के कुछ लम्हे यादगार होते हैं, जिंदगी के कुछ लम्हे यादगार होती है, यादों में कुछ लोग खास होती है, यादों में कुछ

श्लोक खास होती है। यूं तो वो दूर होता है नजरों से, पर उनकी एहसास दिल के पास होती है। प्यार करने वालों के लिए कुछ प्यार भरी शायरी आप लोग को हम सुनाते हैं कि तेरे हर नाकामी को कामयाबी में बदल दूंगी, तेरे हर नाकामी को कामयाबी में बदल दूंगा, तेरे हर सपनों को हकीकत में बदल दूंगा। ऐ दोस्त, हम खुदा से दुआ ऐसी करेंगे कि तेरे हर गम को खुशी में बदल देंगे। कुछ प्यार भरी शेरे हम आप लोग को और सुनाते हैं दोस्तों। आओ चला जाए एक और गीत की ओर, और वो है और वो भी फिल्म हरियाली और रास्ता कहे, जो 1966 का ये फिल्म है। मनोज कुमार और मालहा सिन्हा इसमें काम किया है। आओ चलकर और इस गीत को मजा लूटे।

दिल से और मिटाने चला हूँ, और खुद उसके और क्या क्या प्यार भरी मोहब्बत भरी गीतों से आज हम आप लोग को और सेवा करेंगे। दोस्तों अपनों के बीच बेगाना हो गए हम, अपनों के बीच बेगाने हो गए है, प्यार का लम्हे अनजानी हो गई है। जहाँ पर फूल खिलते थे, जहाँ पर फूल खिलते थे कभी, आज वहीं पर वीरान हो गई है। ये बात है दोस्तों, जो शख्स तेरे तस्वीर से ही महक जाए, जो शख्स तेरे तस्वीर से ही महक जाए, सोचो तुम्हारे दिलार में उसका क्या होगा। हमारे प्यारे सुनने वालों, तो हम चलते हैं एक गीत की ओर, वो है कभी कभी का, फिल्म कभी कभी का ये गीत है, मैं पल दो पल का शख्स।

और इस गीत के बाद में हम चलते हैं एक मोहब्बत भरी गीत की ओर। लोग बचपन पर बहुत प्यार किया है और जो बचपन पे किसी को प्यार किया है उस सब के लिए यहाँ पर एक शेर है, जिंदगी का पहला प्यार कौन भुलाता है, जिंदगी का पहला प्यार कौन भुलाता है, ये पहली बार होता है जब कोई किसी को खुद से बढ़कर चाहता है, उसकी पसंद उसकी ख्वाहिश मिल खुद से को भूल जाता है, अकेले में उसका नाम लिख लिख कर मिटाता है, दोस्तों बात करने से पहले सोचता है क्या कहना है, बात होने के बाद फिर भी कुछ रह जाता है, होता है खूबसूरत कितना पहला प्यार, होता है खूबसूरत कितना पहला प्यार, ना जाने क्यों अक्सर अधूरा रह जाता है पहला प्यार। तो सबके लिए यहाँ पर हम एक गीत को चलाते हैं कि बचपन का प्यार कभी भुलाना नहीं, आओ मिलकर सुना जाए।

और बचपन की मोहब्बत को दिल से दुआ करना। और दोस्तों, प्यार भरी गीतों का बहार प्रोग्राम हमारा चलते हैं। और कहते हैं, मोहब्बत का एहसास तो हम दोनों को हुआ था, मोहब्बत का एहसास तो हम दोनों का हुआ था, फर्क सिर्फ इतना है हमारे प्यारे दोस्तों, फर्क सिर्फ इतना था कि उसने क्या था और मुझे हुआ था। उसने किया था और मुझे हुआ था। दिस इज वेल्ग मोई दोस्तों, कोर्ट मार हेल मोई। मोहब्बत का एहसास तो हम दोनों का हुआ था, फर्क सिर्फ इतना था कि उसे किया था, उसने मोहब्बत किया था और मुझे मोहब्बत हुआ था। हमारे प्यारे दोस्तों, ये सब प्यार भरी शायरे और आपको हम यहाँ से सुनाते हैं कि जाओ जाओ जाओ ढूंढ लो, हम सबसे ज्यादा चाहने वाला मिल जाए तो खुश रहना। जाओ ढूंढ लो, हमसे ज्यादा चाहने वाला मिल गया तो खुश रहना। ना मिले तो हम पर, ना मिली तो हम फिर भी तुम्हारी है। ये सब बातें हैं दोस्तों, जो दिल को छू कर और निकल जाता है। हम चलते हैं एक गीत की ओर, जिसमें शमी कपूर काम किया है, राइसी संगे पद्मा श्री मोहम्मद रफी का ये गाना है, और ये है, ये गीत है, और मेरी मोहब्बत जवान रहेगी। मेरी मोहब्बत जवान रहेगी, यानी कि मोहब्बत कभी बुढ़ाते नहीं है, उम्र चले जाते हैं दोस्तों, लेकिन मोहब्बत जवां रहती है। ये हमारा पैगाम है रेडियो फाउन के माध्यम से, आओ सुना जाए।

जरूर दोस्तों, मेरी मोहब्बत जवां ही रहेगी। और ये है परमा श्री मोहम्मद रफी का गाया हुआ ये गीत है, और मोहब्बत भरी प्यार भरी लवली सॉन्ग यहाँ से हम, और प्यार भरी हार्टब्रोकन सॉन्ग्स और कुछ यादें हम आप लोग को यहाँ से चलाते हैं। कि कहते हैं समझाता ही नहीं वो मेरे अल्फाज की गहराई का, समझता ही नहीं वो मेरी अल्फाज की गहराई, मैंने हर लफ्ज का दिया जिसे मोहब्बत कहता है, मैंने हर लफ्ज कहा दिया कह दिया जिसे मोहब्बत कहता है। दोस्तों एंड ब्रोकिंग्स हार्ट शायरी यहां से हम आप लोग को एक दो सुनाते हैं। तुमसे मोहब्बत तेरी औकात से ज्यादा की थी, तुमसे मोहब्बत तुमसे प्यार तुमसे मोहब्बत तेरी औकात से भी ज्यादा की थी, अब बात नफरत की है सोच सोच तेरा क्या होगा। माना कि मुझे प्यार करना नहीं आता, माना माना कि मुझे प्यार करना नहीं आता, पर तू बता कि तुझे डील तोड़ना किसने सिखाई है। ये तो भी होता ना हमारे प्यारे प्यारे सुनने वालों रेडियो का। हम चलते हैं आशीष जी के एक रोमांटिक सॉन्ग है परमा श्री मोहम्मद रफी का गाया हुआ ये गीत है, और चला जाए फिल्म के नाम है प्यार का सौदा नहीं दोस्तों, प्यार का सागर फनी खती होंद एनसस्टर। आओ चला जाए सुनने को कि मोहम्मद रफी और आशा भोसले क्या गाया है।

प्यार की जिंदगी देने वाली। दोस्तों कितने लोग कहते हैं, बोले जॉनी तू सिर्फ प्यार भरी गीतों को चलाते हैं, लेकिन हम अपने जिंदगी में बेवफा बहुत हमको मिला है और बेवफाई भी बहुत हुआ है दोस्तों। और जितने लोग बेवफाई के रास्ते से गुजरा है वो सब के लिए यहाँ पर हम कुछ बेवफा का शेर लेकर आया है और एक गीत भी लाया है। कहते हैं फिर से तेरे महफिल में चला आया हूँ, फिर से तेरे महफिल में चला आया हूँ, अंदाज वही है, अंदाज वही है, बस अल्फाज नया लाया हूँ, भूल तो जाऊँ तुझे दोस्तों। और कहते हैं भूल तो जाऊं तुझे पर मेरे पास रहेंगे क्या कुछ, यानी कि बेवफाई का हम आपको शेर सुनाते हैं कि कितनी लोग बेवफा के रास्ता से भी गुजरा है, ठोकर लगा है, दिल टूट गया है, वो सब के लिए भी यहाँ पर हमने कुछ रखा है। अब जुदाई का सफ़र को मेरे आसान करो, अब जुदाई का सफ़र को मेरे आसान करो, तुम मुझे ख्वाब में आकर ना परेशान करो, तुम मेरे ख्वाब में आकर और ना परेशान करो। और तो क्या था बेचैनी के लिए अपनी आंखों के ख्वाब बेच आई है हमने। तो दोस्तों ये सब एक हम एक दो बेवफाई का गीत आपको हम सुनाते हैं, आओ सुना जाए।

और तेरा मासूम चेहरा भूल जानी को काबिल नहीं है। और दोस्तों मोहम्मद अजीज ने इस गीत को गाया है और कहते हैं, कुछ ऐसा हंसने भी जिंदगी में होता है, कुछ ऐसा हादसा भी जिंदगी में होता है कि इंसान बच तो जाता है मगर जिंदा नहीं रहता है। दोस्तों ये तो भी कभी कभी बात होता है ना कि प्यार में अब ये शामिल करना है, वो सच कहना है, वो सच कहे ना कहे हम अतबार करना है। तो ये सब बात है दोस्तों। इस गीत जो है, इस गीत को इस फिल्म में सुनील दत्त और माला सिन्हा ने काम किया है। आओ मिलकर सुना जाए।

में और तुझको मेरा प्यार पुकारे, फिल्म के नाम है गुमराह। आशा भोसले महेंद्र कपूर का ये गाना है और म्यूजिक दिए थे रफी साहब ने। फिल्म का नाम था गुमराह। फन लिखित होंद द्रियन शस्त्र, जिस फिल्म में काम किया सुनील दत्त, माला सिन्हा। और दोस्तों और ये प्यार भरी गीतों का बहार सॉन्ग्स हम आपको सुनाया है।

मेरा सनम सबसे प्यारा है, ये शानदार गीत चला फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के शाम के कार्यक्रम में हमने पेश की। और ये था आशा जी और कुमार सानू, फिल्म है दिल का क्या कसूर, दिल का क्या कसूर में से निकाले हैं ये शानदार गीत हमने पेश किए। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं, तो क्या ख्याल है अगर ये आपको सुना दूँ।

जाने कैसा है मेरा दीवाना, या क्या बात है। आशा जी और एवरग्रीन किशोर कुमार आपको सुनाए फिल्म है आंसू बन गए फूल, उसी में से निकाल कर हमने पेश की ओफर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो www.faunfm.nl पर। आप चुने जो लोग चुन के मीटर पर आपका हृदय से स्वागत है। आप चाहे जहाँ भी होंगे, दुनिया के जिस कोने में भी होंगे, फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पर आप चुन हैं। सुबह हो या शाम होगा, रात्रि होगी, पता नहीं कौन सा मौसम है, कौन सा दिन है, आपके जगह आपके जहाँ पर हैं, आपका हृदय से स्वागत है। चलिए आपका स्वागत करते हुए शुभकामना के साथ हम पेश कर रहे हैं ये गीत।

शम्मा बुझने को चली, ये गीत हम निकाले हैं, देखते हैं। फिल्म मेरे ध्यान से निकल गया, शम्मा बुझने को चला। फिल्म गंगा की लहरें, हाँ गंगा की लहरें में से निकाले हैं रफ़ी साहब का ये गीत, हम आपको सुनाए हैं फ़ौन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में।

संगे मरमर से तराशा हुआ ये शोक बदन इतना दिलकश है कि अपनाने को जी चाहता है। सुर्ख होंठों में थिरकती है वो रंगीन शराब जिसको पी पी के बहक जाने को जी चाहता है, लेकिन इस हुस्न पे मर जाने को जी चाहता है। हमसे बेहतर है ये पाजेब जो इस पाँव में है, रख ले कल के लिए ये दूसरी पाजेब दिल, कल इसी बज्म में फिर आने को जी चाहता है।

इस रेशमी पाजेब की झनकार की सदके लता जी और रफ़ी साहब की आवाज़ में ये शानदार गीत पेश किया गया उर्फ़ान हिंदुस्तानी रेडियो, जबकि आप सुन रहे हैं और मैं चला रहा हूँ। आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अगला गीत हम आपको सुनाने वाले हैं। क्या ख्याल है, शाम के वक्त है और आप भी हैं और मैं भी हूँ।

0: लता जी और मैं तो मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस फिल्म छाया में से निकाले हैं निगेटिव एन एस एस का ये फिल्म है और सलील चौधरी के साथ पर हमने पेश की फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं और वो ये है, जी हाँ, इस तरह से आ रहा है।
1: आई है रे, हमने कसूर

खाई रे हमने कसम हंस परदेसी। लता जी आपको सुनाए हैं ये शानदार गीत हमने पेश की। चलो एक गीत और हमने प्लेयर में रखे हैं लेकिन समय नहीं मिला कि ये गीत कौन सा है। हाँ ये तो पता है कि फिल्म बाबू का है, निकितिन फैफन तख्त का है और आशा जी और किशोर कुमार जी ने गाए हैं और देखते हैं राजेश रोशन के साथ, ये सब पता है लेकिन गाना चलो मैं भी सुनता हूँ, उम्मीद है आप भी सुनोगे।

तो गीत की कहानी आपने सुन चुके हैं, हमने पेश की ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। जी हाँ, तो अगला गीत हम पेश करने वाले हैं, तो क्या ख्याल है गर्ज मैं आपको ये गीत सुनाऊं? गंवार में से निकाल रहे हैं आशा जी और रफी साहब।

फिल्म गंवार में से निकाले हमने नौशाद अली की साँच पर, और रफ़ी साहब और आशा जी आपको सुनाई ये शानदार गीत ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो, जबकि आप चून हैं फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पर। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं, तो क्या ख्याल है अगर ये पेश करूँ, बस धमाकेदार गीत है।

एक बेचारा प्यार कमारा, रफ़ी साहब की आवाज़ में हम आपको सुनाए ये शानदार गीत हमने पेश की ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। चलिए अगला गीत क्या ख्याल है? जी हाँ, मैं तो मुकेश द हार्ट ऑफ अ मिलियंस कंचन जी के साथ फिल्म धर्मात्मा में से है।

तुमने किसी से कभी प्यार किया है, ये शानदार गीत चला। जी हाँ, ये शानदार गीत चला ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। जी हाँ, तो चलिए कार्यक्रम में हम आगे कार्यक्रम आगे बढ़ा रहे हैं। और क्या ख्याल है अगर जब मैं आपको ये गीत सुनाऊँ इस तरह से,

0: दुनिया में हमारा दिल होते है, ये शानदार गीत हम निकारे फिल्म दिल ही तो है में से शंकर जय किशन के साज पर पेश हुआ ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। जबकि लीजिए लता जी एक बार फिर है, जी हाँ, पंडित रविशंकर के त्रिब्यूट के लिए निगति शस्त्र का ये फिल्म है।
1: ये ऑल इंडिया रेडियो बम्बई है। अब हम आपको कुछ पुराने गानों के रिकॉर्ड सुनाएंगे। आज से 10 साल पहले इन गानों ने धूम मचा दी थी। पहले सुनिए सांवरे सांवरे, गायिका अनुराधा राय।
0: जिसे के पंडित रविशंकर वो मशहूर सितारे थे। लता जी की आवाज में

ये साज कभी पंडित रविशंकर जी ने स्टेज पर बजाया था और इसी साज से उन्होंने ओपनिंग की यानी शुरू की। तो ये धुन को म्यूजिक डायरेक्टर शंकर जयकिशन ने इसमें जान डाल दी और इसे लता जी से ये धुन गवाया शब्दों के साथ। और हमने पेश की ऊपर फ्राउन हिंदुस्तानी रेडियो। चलिए अगला गीत पेश करने वाले आशा जी उर्फ़ी साहब। जी हाँ, फिल्म जिद्दी में से निकाले हैं।

आशा जी और रफ़ी साहब की आवाज़ में फिल्म ज़िद्दी में से निकाले हैं ये गीत और हमने पेश किए आपके लिए। चलिए अगला गीत चलाने वाले हैं, क्या ख्याल है अगर जब मैं आपको ये सुनाऊँ, लता जी और मन्ना दे जी। जी हाँ, लता जी और मन्ना दे जी मिल के आपको सुनाएंगे ये शानदार गीत। और देखते हैं तो इसे मैं निकाल रहा हूँ फिल्म रात और दिन में से, शंकर जयकिशन के साज पर, बस इस तरह से।

लता जी और मन्ना दे जी फिल्म रातों दिन में से निकाले हैं और शंकर जय किशन के साज पर हमने पेश की है। लीजिए एवरग्रीन किशोर कुमार अपने प्यार की इजहार कर रहा है और आगे इन्हीं से सुनिए एवरग्रीन किशोर कुमार।

तुम कितनी खूबसूरत हो, क्यों दिल तुम पे है इतना दीवाना, एवरग्रीन किशोर कुमार आपको सुनाए हैं फिल्म जंगल में मंगल में से निकाल कर ये गीत हमने पेश की। आप सबको एक शुभ शाम पेश करते हुए, आपका हृदय से स्वागत करते हुए, चलिए हम आपको गीत सुना रहे हैं। ये क्या ख्याल है?

लता जी और मैथ्यू मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस दोनों मिलके आपको सुनाए हैं। चलिए लता जी के पास बाद पास नहीं बाद लता जी के बाद लता जी और मन्ना डे है। जी हाँ, इन दोनों के ये प्रेम कहानी चलिए हम आपको सुनाते हैं। इस तरह से मन्ना डे जी और लता जी फिल्म

कि हमें तुम बुलाओ, फिल्म प्रोफेसर में से निकाले हैं शंकर जय किशन के साज पर निकली तुई से सख का ये गीत लता जी और रफ़ी साहब की आवाज़ में हमने पेश की। ये अगला गीत हम पेश करने वाले हैं और वो ये इस तरह से है।

0: लो ये कली मुस्काई टाइटल सॉन्ग हम आपको सुनाए ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। जो लोग चुन के मीटर पर, आपका हृदय से स्वागत है। आप जहाँ भी होंगे, जो भी कर रहे होंगे, फाउन हिंदुस्तानी रेडियो की तरफ से बहुत बहुत बधाई है। चलिए अगला गीत हमने प्लेयर में रखे हैं, तो क्या ख्याल है? जी हाँ, ये गीत इस तरह से आ रहा है। गीता रॉय जी निकित इंद्रियम फेफ्ते पुरानी गीत है, फिल्म बाज में से निकाले हैं। क्या ख्याल है
1: कर जा।

Wat klap bad he Gita ji 1953 mein se nikale open air ke saath par ye geet humne pesh kiye aap sunne wale srotaon ke liye ummeed hai geet aapko pasand aaya hoga aapki bahut purani geet hai utni purani bhi nahi hai 1953 1953 ka film baaz mein se nikale hain चलिए अगला गीत रफी साहब की आवाज़ में हमने प्लेयर में कब के रखे लेकिन अभी चलाए नहीं जी हाँ

ये जिंदगी दीवाना कर दे, मैं अपने आप से घबरा गया हूँ। रफ़ी साहब की आवाज़ में हमने आपको सुना है, फिल्म बिंदियाँ बिंदियाँ में से निकाले हैं नेहा तिन शशक का ये गीत, और हमने पेश की ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं, और वो ये है, इस तरह से आ रहा है, देखते हैं।

फिल्म भाई भाई में से निकाले हैं और ये शानदार गीत चला ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। चलिए अगला नंबर हम चलाने वाले हैं और बढ़ते हैं फिल्म कन्यादान की ओर। फिल्म कन्यादान बहुत लोगों ने देखे हैं, कन्यादान में बहुत सारे अच्छे अच्छे गाने हैं। निकिती निघ्न शस्त्र का ये फिल्म है शंकर जय किशन के साज पर। चलिए लेकिन ये गीत आप कम सुनते होंगे क्योंकि कम शायद चल रहा होगा। बहरहाल कन्यादान का ये गीत हम आपको सुनाते हैं।

पराई हूँ पराई मेरी आरजू ना कर, लता जी की आवाज़ में फिल्म फिल्म फिल्म कन्यादान में से निकाले हैं नेक तीन नेक ने सस्त होनी सौ उनहत्तर का ये गीत शंकर जय किशन के साज पर हमने पेश की ओ फॉर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो।

रफी साहब आपको सुनाए शमा जले या ना जले, ये शानदार गीत हमने पेश की ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो, जबकि आप भी हैं और मैं भी हूँ। चलिए अगला गीत हमने प्लेन में रखे हैं मैथु मुकेश, द हार्ट ऑफ मिलियंस, फिल्म है जिंदगी और तूफान निगिन फैफ सैफ तक 1975 का ये गीत लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साथ पर। बहुत दिन हुए ये गीत हमने भी नहीं सुने हैं और शायद आप भी नहीं, और अगर सुने होंगे तो मेरी बैड लक है, मेरी बदनसीबी है। बहरहाल चलिए ये गीत हम आपको सुनाते हैं इस तरह से। ये गीत की शब्द जो है, जी हाँ, इसके शब्द पर अवश्य ध्यान दीजिए, बहुत प्यारे शब्द है और बहुत मतलब भरी। हिंदुस्तान में लोग सरनामे बोलते रही समझो या के मौत, सुन लीजिए।

मैं तो मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस आपको सुनाए ये गीत हमने निकाले हैं, देखते हैं फिल्म जिंदगी और तूफान में से 1975 का ये गीत हमने पेश किए। चलिए एक गीत हम आपको सुनाते हैं और वो ये है, इस तरह से आता है।

गीत गाया पत्थरों ने, यहाँ टाइटल सॉन्ग हम आपको सुनाए हैं फिल्म में गीत गाया पत्थरों ने, रामलाल के साज पर महेंद्र कपूर जी और आशा जी दोनों मिलके आपको सुनाए। और अगर मैं गलती नहीं बोलूँगा तो जहाँ तक मेरा ख्याल है ये जितेंद्र जी की पहली फिल्म थी। जी हाँ, जितेंद्र की पहली फिल्म थी गीत गाया